0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين

जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा बीबी मरियम गुस्से में आने की जरूरत नहीं है, ये तो तेरे रब का फैसला है और तेरे अल्लाह को बगैर तेरी शादी के बगैर किसी चीज के बच्चा पैदा करना मुश्किल नहीं, बड़ा आसान है। और अल्लाह तो चाहते हैं कि उसको एक निशानी बनाए अपनी कुदरत की, कि कोई ये ना कहे कि अल्लाह बना तो सकता है लेकिन जब तक मियां बीवी ना हूं वो भी नहीं बना सकता। अल्लाह चाहते हैं कि मैं अपनी कुदरत के तमाम नमूने दिखा दूं, मैं चाहूं तो नूर से मलाइका पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो नार से जिन पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो मिट्टी से आदम पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो आदम से हव्वा पैदा कर दूं, मैं चाहूं तो मरियम से ईसा पैदा कर दूं, यखलुक मा यशा, मेरी मर्जी में जो चाहूं जैसे, यही तो उसकी शान। अच्छा जी, उन्होंने कहा कमाल है तो ठीक है, और न कहा बीबी तुम बात कहो ना कहो, का ना अमरम मकजिया, ये तो अल्लाह की तकदीर का फैसला हो चुका है, अब वो तब्दील थोड़ा होता है। अब जनाब यानी हमल भी हो गया, बजो अमल भी हो गई, अब बच्ची बिचारी बैठी रो, या लैतनी मित्तु कबल हाजा व कुंत नसियम मनसिया, रो रही है फिर भी, हालांकि जिब्रील बातें करके गए, कहती हाय काश मैं तो पैदा ही ना हुई होती, कम से कम चलो ठीक है मैं बेगुनाह हूं, मेरा दामन साफ है, लेकिन कौम तो नहीं जानती हूं। जिब्रील की बात हुई तो मेरे साथ हुई है, पूरी बिरादरी के साथ तो नहीं हुई ना, बिरादरी मुझे जब आएगी तो मैं कैसे मुकाबला करूंगी। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें मुकाबले की जरूरत नहीं है, जब कौम सामने आ जाए तुम चुप करके सिर्फ ईसा की तरफ इशारा कर दो, हम जाने हमारा ईसा अलैहिस्सलाम जाने, कौम आ गई गुस्से में भरी हुई है, कहती या उख्ता हारून मा कान अबूक इम्रा सौइन वमा कानत उम्मुकी बगिया, के भाई हारून की बहन, बाद लोगों ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के जो भाई थे हारून उनकी बहन, ये मुराद नहीं है, बल्कि मुराद ये है कि कान रजुलन सालिहन, उस इलाके में एक बहुत बड़े आबिद गुजार थे तो उनका नाम हारून था जिसकी तरफ निस्बत की गई। उनने कहा तेरा बाप अच्छा, तेरी माँ अच्छी, ये क्या है? फअशारत इलैही, अब बीबी ने इशारा किया, कालू कैफ नुकल्लिम,

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, मोहतरम भाइयों, अजीज नौजवानों, सीरत पाक के सिलसिले में कुछ अरसे से ये सिलसिला दुरूस जारी है और हमने सीरत मुबारका के कुछ हिस्से, कुछ अहवाल, कुछ हालात पढ़े, बयान किए और सुने। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का की सरजमीन तंग हो गई तो आप ताइफ तशरीफ ले गए। ताइफ वालों ने भी इस्तकबाल के बजाय बड़ा शदीद रद्द अमल जाहिर किया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक को जख्मी किया। सुफहाए ताइफ ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आवाजें कसे, आपके पांव

0: कर दूं, आपस में बातें करने के लिए। मैंने कहा मैं ऐसा कोई नेक आदमी नहीं कि नेकी के लिए बंद कर रहा हूं, मैंने आपसे बातें कर। तो खैर मैंने उसको बंद कर दिया। तो उसके बाद वो रो के जनाब सुनने लगे कि अभी अभी मुझे ऐसे थोड़ी सी नींद आ गई थी, अभी अभी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की ज़ियारत हुई, अभी अभी तशरीफ लाए थे। मैंने कहा हजरत फिल्म चल रही थी या उस वक्त बंद थी जब हजरत अबू बकर आए थे तुम्हारे कमरे में? बदबख्त, फिल्म चल रही थी और हजरत सिद्दीक भी यहां आए थे। मैंने कहा मुझे फिर पागल बनाते हो यार, किसी और बेवकूफ उल्लू को मुरीद बनाओ, मैं इतना जल्दी नहीं बेवकूफ बनता तुम्हारे आगे। और तुम्हारे यहां फिल्म चल रही और कहते हो अभी अभी सैयदना सिद्दीक आए थे, क्या बकवास कर रहे हैं? खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो कि जहां ये मुनकरात हूं वहां तो कोई फरिश्ता दाखिल नहीं होता, जी जाए कि सैयदना अबू बकर आ जाए। नहीं जी नहीं, असल में वो मैं नींद की बात कर रहा था। मैंने कहा अच्छी नींद की बात कर रहे हो, फिल्म चल रही है, 80 साल की तुम्हारी उम्र है, तुम्हें नींद है, इसको तो बंद कर दो, इसको क्यों नहीं बंद किया? चलो तुम्हें तो नींद है, इसको कौन देख रहा है? यानी जब हमारे बूढ़ों का ये हाल होगा तो इन बच्चों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, इनसे क्या तवक्को कर सकते हैं? ये तो पैदा बेचारे फिल्मी दौर में हुए हैं, इनका क्या गुनाह है कि किसी एक्टर की शक्ल बनाएं, किसी के बाल बनाएं, किसी की कॉपी करें, जीन पहन के जानते। एक तो खैर हमारी जान छुटी है जब सिर्फ जीन पहननी शुरू किया, ना ये गलती है ना धोने की जरूरत पड़ती है। वालिदैन को एक बहुत बड़ा फायदा हो गया, और इतना कि 2 साल पेशाब करते रहो सारा उसके अंदर जज्ब हो जाता है। ऐसा अजाब का कपड़ा अल्लाह ने इनके गले में डाला है, माशाअल्लाह मुबारक हो इनको, कि वालिदैन खर्चे से छूट गए। और जूं जूं पुरानी होती जाए फैशन बनता जाता, और जितने सुराख ज्यादा हो जाए उतने आप मॉडर्न हो गए। अजीब अजाब है अल्लाह का इन कौमों पर, और बड़े फख्र से चलते हैं। अब तो लड़कियां पहन दी है माशाल्लाह जी, अब तो हम और ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते और हमारे बस में। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि हजूर ये 50 नमाजें कहां पढ़ेंगे आप जाएं? हजूर वापस गए, अल्लाह ने फरमाया अच्छा 10 माफ। फिर आए कि भाई अब तो 40 हो गई है। उन्होंने कहा नहीं हजूर, इर्जी इला रब्बिक, फिर माफी मांगे, 40 भी अदा नहीं हो सकता। अब उलमा ने कितनी अजीब बात लिखी है, उन्होंने कहा कि ये 5 दफा हजूर गए, 5 दफा आए, तो मूसा अलैहिस्सलाम भी एक ही दफा कह देते या हजूरी एक दफा माफी मांग लेते और अल्लाह भी एक ही दफा माफ कर देते। तुमने कहा कि दरअसल अल्लाह चाहते थे कि मेरे मदनी को एक मेराज नहीं, एक मेराज में 5 दफा फिर मेराज पे, एक दफा तो बैतुल मक़द्दस से हो और एक दफा फिर सिदरतुल मुंतहा से हो अल्लाह की तरफ। और मूसा अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि रब्बे अरनी अंजुर इलैक, कि मैंने तो अल्लाह को देखने की दरख्वास्त की थी, अल्लाह ने कबूल न की, मैं खुदा को तो न देख सका, लेकिन जो आंखें खुदा को देख रही हैं मैं उनको तो देखता रहूं बार बार, कम से कम ये आंखें खुदा को देख चुकी हैं, चलो मैं खुदा को न देख सका तो मोहम्मद मदनी की आंखों की ज़ियारत तो करता रहूं, वरना तो एक दफा में भी माफी हो सकती। आखिर जब 5 नमाजें रह गईं और अल्लाह ने यह फैसला फरमा दिया कि आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 लेकिन लिखेंगे हम 50, ला युबद्दलुल क़ौलु लदी, कि मेरे मदनी हमारे यहां फैसले नहीं बदले करते, लेकिन अब यह है कि उम्मत आपकी नमाज तो 5 पढ़ेगी, मन जा अबिल हसनत फलहू अशरु अमसालिहा, लेकिन सवाब जो है हम उनको 50 करें। वापस आए मूसा ने कहा हजूर फिर जाकर, अब मुझे बार बार दरख्वास्त करने से हया, अब अल्लाह ने जो फैसला फरमा दिया है मुझे कबूल है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: तो फिर वो क्या कहते हैं उस चीज को वो अपनी तरफ से जाने। इसके अंदर ये भी पहलू है कि ये देख रहे हैं कि आपको पता है कि एक टाइम पे इनने पूरा फ्री कर दिया था डॉक्टर की तरह से, कि आपको कुछ पीरियड होता था प्राइवेट डॉक्टर के पास जा सकते हैं। उसमें भी शायद ये कुछ पैसा वहां से तबील करके ला के इस तरफ इस बेड में फेंक दें, ये भी सोच रहे हैं। तो ये एक बंदा कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है जिसको बनाया जाएगा और जिसको क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की जाएगी। सबसे
1: अदनान,
0: पहले
1: जिस
0: तो
1: तरह बच्चे घरों में
0: इनका
1: बैठकर गेम्स वगैरह खेलते हैं, कंप्यूटर पे खेलते हैं, टेलीफोन पे खेलते हैं, तो आप क्या सकते हैं कि इस वक्त जो सियासतदान है वो भी एक किस्म की गेम खेलते हैं अपने पब्लिक के साथ, अपने वोटर सपोर्टर्स के साथ?
0: नहीं, राजा साहब अपनी अपना वो कोशिश तो अपनी कर रहे हैं ना इस वक्त। मसला ये होता है कि पैसा जो है ना इस्तेमाल करना आसान होता है, अंदर लाना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं एक आपको बात कहूँ कि एक होता है कि हर चीज का होता है, कोशिश वो करेंगे अपनी तरह से। अब सारी गेम तो कोई खेलता है क्योंकि हर एक अपनी क्या कहते हैं अपनी सीट का होता है और अपनी क्या कहते हैं पावर का होता है। मगर ये भी पता है लोगों को कि ये जो बात इनने कर दी है ना इसके अंदर वोट बैंक बहुत है। इंग्लिश लिस्ट वाले कभी पीछे नहीं हटेंगे, वो देख रहे हैं कि हम पीछे हट गए तो हम भी खत्म है, तो वो तो पीछे नहीं हटेंगे। मगर इस पे डाउट इसलिए पड़ा था कि कौन लोग थे लास्ट व्यू के ने कह दिया था कि कोई पता नहीं होता है कि नहीं होता, क्योंकि उसके वो फिर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन चीजों की पड़ जाती है कि आप लोग अंदर क्या करके आए हो। अभी डिबेट चल रही है कि सारा फिनिशर प्लेस नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि जब वो बैठेगा नया फैंस मिनिस्टर स्टार्ट उसकी टीम बैठेगी। अब टेक्निकली देखे ना कि सारे ओवर्स के मैं यही देख रहा था कि बहुत सारे फैंस के नए आ गए, पुराने हट गए। तो जब वो सारी उजवेल बैठेगी सब अपने आइडियाज देंगे, सब बैठ के इसको कोशिश करेंगे कि इसका कोई ना कोई क्या कहते हैं वे थ्रू निकले। क्योंकि बेजता वाले ने तो यही किया है ना कि जो उनका चेयरमैन है उसने कहा है कि जो हमारी वाइस चेयरमैन है पार्टी की इकोमोनली की पॉलिसी सारी वो चलाएगी। और इसी तरह हर पार्टी अपना क्या कहते हैं ना बंदा देगी जिसने नेगोशिएशन करनी है। और सबसे बड़ा बात ही इकोमोनली पे चलती है कि पैसे कहाँ से आने हैं, पैसे कहाँ से जाने उन्हें और पैसे को कैसे चलाना है। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर डेज में कमिंग डेज में कैसे ये पूरे
1: तो अदनान, कल्चर मिनिस्ट्री किसके
0: चीज
1: पास गई है?
0: कल्चर मिनिस्ट्री सीनियर स्टाम्पे के पास करके जो उसके पास है।
1: तो आप देखते हैं कि गैर मुल्कियों के लिए बात तो बड़ी करते हैं, सैफ वाले भी बड़ी बात करते हैं, रेडिकल वेंस्टा वाले भी हमेशा वोट्स लेते हैं, तो आप देख रहे हैं कि सोशल डेमोक्रेट के जो इंटीग्रेशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान दिया, तो अब बात तो पता लगेगी कि जो जो इन पार्टियों में वो किस तरह अपना रोल अदा करेंगे।
0: सर आप एक चीज हमेशा याद रखना कि उलनी पॉलिटिक्स का जो नेगोशिएशन इस किंग्स कॉलेज के अंदर नहीं लिखा गया हुआ, मगर उसके अंदर ये बात है कि ये सबको मालूम है कि जो गवर्नमेंट इस वक्त बैठी हुई है वो तो सिटिंग गवर्नमेंट है। आप टेक्निकली देखें तो उसके अंदर से लास्ट लोगे और मेरे ख्याल उनके मंत्रिता डाले जाए ना तो वो बन जाते हैं करीबन 52। और वो मतलब पहले ही उस ब्लॉक के अंदर क्लियर चल है कि साहब मिलने की पूछती होनी चाहिए। टेक्निकली पार्लियामेंट के अंदर फिर आप लोग प्रिंस का भी डाल लें, नेपाल भी डाल लें, पैसवाल के पक्षी भी डाल लें, टेमस के मुखाड़ा भी डाल लें। तो उलनी की पुलसी जो बन गई हुई है वो वहां पे ही रहेगी और हो सकता है कि उससे थोड़ी सख्त हो जाए मगर वो देखा जाएगा। क्योंकि जैसे बात चल रही है अभी कि हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं जो हम लोग हैं हम लोगों को बाहर से किसी इंक्लूडिंग डांस को भी ये मसला है कि वो लोग शादी कर लें या कोई चीज कर लें तो उनके लिए बड़ी मुश्किल है। मगर जो नया बंदा ला रहा है साउथ एशिया से जिसमें वो पूरी फैमिली के साथ आ रहा है तो सर ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ना ये बहुत देखी जा रही है
1: ना, तो ये
0: और
1: तो
0: इसको
1: गैर
0: बड़ा
1: मुल्कियों को
0: डिमांड चल
1: पूछना
0: रही है।
1: चाहिए ना कि अगर आपने जिन जिन को वोट दिए हैं वो बोलते क्यों नहीं है।
0: अरे सब ये तो वो उनको ही पता है ना। ये तो क्वेश्चन इसलिए होता है कि मैं आपको एक एक एक, एक मिसाल दे देता हूँ कि मैं एक ये इलेक्शन जब हो रहा था इलेक्शन के दिनों में जो बैठ हो रही थी वहां पे ना एक छोटी सारी बात शुरू हो गई क्योंकि रुमाल पे चौकलेट पर बैठ शुरू हो गया। और वो प्रिपरेशन के साथ आए।

0: हुए तो मुझे पता था, मेरे साथ बैठा हुआ था वो, उसकी भी पहनती थी वो, जीप भी स्टैंड उसके थे, मेरी बीवी का राज था वो। ये कहते आ तेरी कहते आ तेरी भी शामत आ जाएगी। मैंने कहा देख, मैं कहता हूँ मेरी शामत नहीं आएगी, ये चुप कर जाएंगे। वो कहते हैं, मैंने कहा एक बात मुझे बता, तुमने मुझे सवाल ही कौन सा किया। मैंने कहा मुझे एक बात बता, तुम्हारी भी शादी हुई। कहता हूँ, कहते तुम अपनी बीवी की डिसीजन सपोर्ट नहीं करते। कहते मैं बीवी अपनी बीवी की डिसीजन सपोर्ट नहीं करनी तो किसकी डिसीजन सपोर्ट करनी है? मैंने को उसे कहा, तो तू मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं क्या करूं, कि मैं अपनी बीवी के अगेंस्ट चला जाऊं कि वो रुमाल पहनती है? और उधर जितनी सेल्स थी वो सारे चुप हो गए। वो सारा एक बार में बंदा कहता तूने जवाब, मैंने कहा तो मैंने उसको जवाब सही दिया है। उसने कहा कि वो अपनी बीवी को सपोर्ट करेगा, मैं सपोर्ट करूं? मैंने कहा बात होती है कि आप करने की। अब जितनी पार्टी वाले ये सारे बैठे हुए हैं, इन लोगों को ये सवाल अपनी पार्टी से पूछना चाहिए। मैंने जब पूछा था तो वो यही कह रहे थे कि हम आपस की तरह हमने किया, अब इसको हम तब्दील करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अब देखते हैं, अब नया बैठे हैं उसको मैं डेफिनेट उससे पूछूंगा कि आप लोग वहां से तो खुला ला रहे हैं, मगर जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं आप उनको पोलते नहीं देंगे तो वो मुल्क छोड़ के चले जाए या कुछ करें, तो आपकी तो प्रॉब्लम सेम है। इसलिए आपको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी की ये करनी चाहिए कि जो यहाँ पे है उनको सारी सहूलतें दें, उसके बाद दूसरी तरफ जाके देखें कि आपको कितने लोगों की जरूरत है। क्योंकि यहाँ के लोग छोड़ते जाएंगे, आप बाहर से लाते जाएंगे, मौत में वही बयान देने अगले इलेक्शन में, एक अंदर आए एक बाहर आए, एक अंदर आए एक बाहर आए। मैंने कहा उस डिबेट को खत्म करना है तो कोई और तरीका करना पड़ेगा, ये नहीं कि हम सेम तरीका बार बार एक करते रहे और वो भी बार बार एक बात करता रहे और हमारे सारे के कहते कान जो है ना वो तांगे पड़ते हैं इस बात को सुन सुन के, और आखिर में ये हो कि हम के चलो बाहर पे असी कुछ और ही करिए।
1: अदनान जी, आखिरी सवाल है, इसी पर क्लोजिंग करेंगे। आपका तजिया क्या कहता है कि गैर मुल्की जिन पार्टियों में आने वाले दिनों में क्या करेंगे?
0: मैं इस पे कॉमर्स कुछ नहीं दे सकता क्योंकि मैं आपको सच बात बताऊं, मुझे नहीं पता। मैंने आप जैसे आपको पहले भी कहा है, मैंने आज भी कहा है कि अब एक गैर मुल्कियों को एक किस्म का क्या कहते हैं स्टैंड लेना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको एक एक बात बताता हूँ, आपका मेरे से बड़े हैं, आपका बहुत बड़ा तजुर्बा है। आपने कभी देखा होगा कि पाकिस्तानी कमेटी कोई बड़ा सा इन्वेंट कर सकी होगा उस प्लेस पे, कर सके या नहीं? देखिए जहां तक मेरा नॉलेज है, इंडियन यहाँ पे हमारे बाद आए हैं, वो ने परमिशन लेके वो उस प्लेस पे एक बड़ा इन्वेंट करने लगे, क्योंकि उनके पीछे कुछ लोग आ गए हैं। तो यहाँ से हमें सबक सीखना चाहिए कि हमारे से लोग पीछे से आके क्या कहते हैं चीजें करने लग पड़े तो हम क्यों नहीं कर रहे? हम तो इधर अब कह लें करीबन 56-60 सालों से, 56 साल हो गए हमें यहाँ पे, तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं।
1: बड़ी अच्छी बात की है, इंशाल्लाह इस पर बातचीत जारी रहेगी। अदनान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
0: ओके, अल्लाह हाफिज।
1: सामान्य नाज़रीन, ये थे अदनान अमीन अली, जो कि तजिया करते हैं और अपनी राय भी देते हैं। हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप कुछ बात कहना चाहते हैं तो आपके लिए भी हमारा, आपकी आवाज़ का टाइम हाज़िर है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ने सोशल डेमोक्रेट और दूसरों के साथ मिलके तो ये अपने बनाए हुए थे। तो फिर ये कहते हैं कि मंडेट जो होती है ना, अगर इनकी दो मंडेट पिछली दफा बनी थी तो इस दफा एक मंडेट, ये इनको इलेक्शन से पहले बात करनी चाहिए थी असूली तौर पर, डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। इन्होंने इन्होंने वो मंडेट यहाँ की जो थी ना सेकेंड मंडेट, उसको दूसरे इलाके में तब्दील कर लिया और यहाँ से वो मंडेट जो है वो दूसरी पार्टी को मिल गई। ये चीजें जो है ना, ये सियासत में ऐसे ऐसी गेम प्ले वैसी होती है, क्योंकि ये जो सियासत है इसको मैं पीडीएम का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि ये उस तरह की फेयर सियासत नहीं है जिस तरह की 2000 से पहले डेनमार्क में होती थी। यहाँ पे लोग जो थे बड़े बड़े लोग थे, बड़ी बड़ी उम्र के लोग थे और उनके पास तजर्बा था, उनके पास हर एक चीज। आज क्या है, आज लोगों के पास आईपैड है, कंप्यूटर है, तो उनके पास आप जाएं। अभी आप ये बात कर रहे थे सुमेरा की, इसने बहुत अच्छी बात की है, इसलिए कि ये अपनी जॉब को जो मिनिस्ट्रीज को मिली है उसको बेहतर तरीके से समझ सकेगी, उसको बेहतर तरीके से टाइम दे सकेगी। पार्लियामेंट में तो वो पहले ही बैठी हुई थी, पार्लियामेंट को वो समझती थी, गुण लॉ को वो समझती थी, हर चीज को समझती थी। हमारे जो लोग हैं, हम लोग हमेशा उस जगह से इलेक्ट होने की कोशिश करते हैं जहां हमारे अपने लोग हैं। हम दूसरी नेशन से जो है वो वोट लेना अपनी तोहीन समझते हैं। और अगर ये पहले ही जो पार्टियों में लोग जाते हैं ये पहले ही समझ लें कि मेरे लिए कौन सा इलाका अच्छा है, तो ये उनको वहां से पार्टी जो है वो मैंडेट दे के आगे ला सकती है।
1: अदनान, इसमें अगर आप वजाद कर दें, साथ साथ साथ ये भी बता दें कि ये जो दो दो सीटें हम रख के बैठ जाते हैं, हमारा एक सीट पे हम काम नहीं करते, दो दो सीटें भी रख लेते हैं, फिर हमारे पास टाइम भी नहीं होता, मसरूफियात भी होती हैं, क्या हमारा सिर्फ ज़ाती जो चक्कर होता है मेंबर बनना, पार्लियामेंट का मेंबर बनना, कम्यून का मेंबर बनना, इसी तरह सियासत हम पाकिस्तानी सियासी पार्टियों की करते हैं तो डिमांड हम जो है से करते हैं।
2: साहब देखिए, जो शाह साहब ने बात की है, शाह साहब ने एक बात सही की है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरा ये जो हम दो देना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि ये मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस वक्त जो शेरन पे बैठे हुए हैं ना, उनको ये भी सोचना चाहिए कि पहले जो था ना चेलन, वो दो हिस्से में होती थी रेक्यूम, अब वो एक रेक्यून में होगी, तो आप पे काम भी बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा और आप लोकल काउंसलर भी होंगे तो आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि ये हो सकता है कि सेम दिन दोनों तरफ मीटिंग आ जाए, तो फिर आपको प्रायोरिटी करनी पड़ जाती है कि कौन सी मीटिंग आप में जाएंगे और कौन सी मीटिंग में आप नहीं जाएंगे। तो सर इसलिए ये भी बहुत बंदे को क्या कहते हैं देखना होता है कि बंदे के पास किस तरह से बंदे ने करना है। या तो आप ये कर लें कि पहले आप कह लें ठीक है मैं चार साल, ये मेरी राय है कि बंदा एक काउंसलर बन जाए, उसके बाद बंदा दूसरी देख लेता है, मगर ये अपनी अपनी पर्सनल राय है। बात ये होती है कि जिस तरह से ये हम बात कर रहे हैं कि ये जिस पहला मुसलमान जो हमारी कैंडिडेट बनी है, आप इसका बैकग्राउंड जाके देखिए ना कि इसने किस तरह से ये तजुर्बा लेके गए। शाह साहब की बात सही है कि इसने ग्राउंड वर्क किया है इसका, ये जब पहले पार्लियामेंट आने से पहले इसने ना जो फुल में एक्टिव जॉब होती है ना, वो इसने तीन चार मिनिस्ट्री में भी की हुई, तो इसको अंदाजा है कि अंदर से काम कैसे है और बंदे ने काम कैसे नहीं करना। जब हमारे से इसकी बात हुई थी, मैं आपको बात कर देता हूँ ओपन, हमारी बात हो रही थी कमोनिटी पे, मैंने इसे कहा, मैंने कहा तुम्हें पता है, मुझे पता है कि दो या तीन साल बाद ये जो सूरत हाल जा रही है इसका क्या है। कहती है यही तो मसला है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उधर ही मुझे पता चल गया था कि ये मिस्टर बनी ना, तो इसको पहले ही पता है कि कौन सी क्या कहते हैं कौन सी प्रॉब्लम है जिस पर फोकस नहीं करना। और इसके पास आप देखिए ना, इसकी मिस्ट्री भी तो क्लाइमेट और एनर्जी और ये मिली है, और ये काफी क्या कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग मिस्ट्री है। मुझे तो शक्त है कि क्लाइमेट की ये माचन लेकर खुद लेगा, मगर उसने नहीं ली, उसने इसको ली है, कोई ना कोई उसका बैकग्राउंड होगा और उसकी दिमाग में सोच होगी। बाकी आपकी बात सही है कि बंदे को ये प्रायोरिटी करनी पड़ती है, क्योंकि मीटिंग सेम आपके पास तो मंडे से जुमेरा आती होती है, किसकी मीटिंग जुमे को तो काम ही करते हैं, तो फिर आपको प्रायोरिटी करनी पड़ती है और आपको उतना ही बोर्ड आता है कि आप जिम्मेदारी ले सकते हो तो आप कर लें, क्योंकि आप क्यों ना प्यूओ में बैठेंगे तो डेफिनेटली मीटिंग

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

बिस्मिल्लाह। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जो हमारे साथ इस वक्त मेहमान हैं अदनान अली अमीन और उस तौकीर हुसैन शाह साहब और मुजीबुर रहमान कुरैशी साहब। अदनान जो है हमारे तजिया निगार, इनका तल्लक सोशल डेमोक्रेट से है। सैयद तौकीर हुसैन बुखारी शाह साहब का तल्लक जो है वो थिंक टैंक भी हैं और सियासत से भी उनका गहरा तल्लक है और काफ लीग के बानियों में उनका शुमार होता है। मुजीबुर रहमान कुरैशी साहब सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नात ठहरी।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिही व असहाबी अजमाइन अम्मा बाद قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون। अगरचे ये इस वक्त जमाने ने ही साबित कर दिया है कि इस जमाने में रहने का उसी को हक है जिसके पास इलम की ताकत कुव्वत है, और आज इस इलम की ताकत कुव्वत की बुनियाद पर ही जो है आदमी इस दुनिया में इज्जत पाता है। तो इलम के जमाने के साथ साथ हम लोग बाहसियत मुसलमान होने के हम वो उम्मत हैं कि हमारा दीन इस्लाम तमाम अदियान और तमाम मजाहिब में से सबसे बढ़ करके इलम की अहमियत, इलम के हुसूल पर तवज्जो देता है, उसकी तरगीब देता है। और इसे उम्मत मुस्लिमा को ही जो है उम्मत इल्म कहा जाता है कि उम्मत मुस्लिमा ने आकर के इस दुनिया के अंदर इलम की रोशनी फैलाई है, और इलम के साथ उन्होंने अपने दुनिया में तामीर और तरक्की के नमूने ऐसे कायम किए कि आज तक मौजूद हैं। मुसलमान इस दुनिया में जजीरे अरब से लेकर के दुनिया में कोने कोने में फैले, और उन्होंने अपनी एक तमद्दुन, एक हदारत जो है अपनी कायम की है। और स्पेन के अंदर जो मुसलमान आए हैं जिन्होंने 700 साल तक स्पेन पर हुकूमत की, और वक्त के साथ साथ उनकी हुकूमत खत्म हो गई, मुसलमानों का वहां से नाम निशान मिट गया, लेकिन मुसलमानों ने वहां जो अपने आसार छोड़े हैं जो आज तक मौजूद हैं, ऐसे आसार, ऐसे कारनामे जिन्होंने आज तक दुनिया को हैरत ज़दा किया हुआ है, और लोग जो है उनको हैरत की निगाह से देखते हैं उन्होंने कैसे कायम किए थे। तो ये सारी बातें उनकी इलम पर दलालत करती हैं। बर्रे सगीर हिंद में 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही है, और मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई, और उनकी खत्म इसी वजह से हुई है हुकूमतें, ये कि जब उन्होंने जिस दीन ने उनको इज्जत दी थी और जिस दीन को अपनाने की वजह से वो एक उम्मत आलिम और मुतालिमा बने थे, तो उस दीन जब छोड़ दिया तो वो उनकी वो इज्जत जिल्लत में तब्दील हो गई। लेकिन उनके कायम किए हुए वो उनकी तामीर और तरक्की के मीनार आज भी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, जो इस बात का जो है ऐलान कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो अपने इलम और हुनर की वजह से उन्होंने इस दुनिया के अंदर खित्ते में हुकूमत की है, और इस इलम की वजह से अल्लाह ताला उनको इज्जत दी। तो मुसलमानों, हमारा दीन इस्लाम जो है वो इलम की सबसे ज्यादा कदर करता है और इलम की अहमियत को बयान करता है। दीन इस्लाम में इलम की कितनी बड़ी अहमियत है, इसे अंदाजा आप लगा लें कि कुरान हकीम की सबसे पहली आयत जब इस जमीन पर उतरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर कर पहली आयत जो उतरी तो इलम से ही मुतालिक थी। पहली आयत यही थी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान वजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम के बाद इक़्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, इक़्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم। तो पहली आयात यही थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि उम्मी थे और आपको किसी और चीज की दावत नहीं देंगे, सबसे पहले ये कहा गया इकरा, तो आपसे ये कहा गया कि आप पढ़िए। तो ये जिन आयात की तफसीर जो है आप जब पढ़ेंगे तो इसी से इलम की अहमियत का पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो इन पहली आयात के जरिए से ही इलम की अहमियत को बयान किया। और हकीकत बात यही है कि जब हम इंसानी तारीख को देखते हैं तो सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खलीफे के तौर पर पैदा किया, और जब अल्लाह पाक ने फरिश्तों के सामने अपना मंसूबा रखा कि मैं इंसान को अपना खलीफा बनाने चाहता हूँ, तो फरिश्तों को बड़ी हैरानगी हुई कि ये एक मिट्टी का पुतला, ये कैसे इतना बड़े मनसब पर ये फायद रह सकता है और कैसे इतना बड़ा काम करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत जो फरिश्तों पर साबित की तो वो इलम के जरिए से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का इलम सिखाया। और फिर ये है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को جنت میں بھیجنے سے پہلے جنت میں جو ہے عالی مقام اور جنت میں اللہ تعالی نے جو راحت اور سکون حضرت آدم علیہ السلام کو دیا, تو سب سے پہلے ان چیزیں دینے سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے علم سکھایا اور علم دیا. وعلم آدم الاسماء کلہا, اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سکھایا ہر چیزوں کا نام سکھا دیے ہیں. تو گویا کہ اس بات میں اس طرح اشارہ تھا کہ گویا کہ جنت اگر کسی کو ملے گی, سعادت اگر کسی کو ملے گی تو وہ علم کی بنیاد پر ہی ملے گی, اور جو ہے جنت بھی کسی کو ملے گی, دنیا کے اندر بھی کسی کو اگر خلافت کا مقام ملے گا تو وہ علم کی بنیاد پر ملے گا. اس لیے آپ جب تاریخ اسلام جب پڑھیں گے تو اسلام کی تاریخ میں جو جس زمانے میں اسلام کا ظہور ہوا, تو ظہور اسلام کے بعد کے زمانے کو جو ہے زمانہ علم کہا جاتا ہے, زمانہ اسلام کہا جاتا ہے, اور اسلام کے ظہور سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس زمانے کو کیا کہا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں عصر الجاہلیہ, جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے. اور یہ نہیں کہا گیا اس کو عصر الکفر, کہ کفر کا زمانہ نہیں کہا جاتا, بلکہ عصر الجاہلیہ کے زمانے جاہلیت, اور جاہلیت کا معنی ہے کہ بے علمی کا زمانہ, بے علمی کا زمانہ. اور یہ یہی جو ہے حقیقت یہی ہے کہ جو ہے دنیا نے جو ہے اسلام کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر کوئی تعمیر ترقی نہیں تھی ایسی جو کہ آج کل زمانے پائی جاتی ہے. تو اس دنیا میں جو بھی تعمیر ترقی ہوئی ہے اور یہ سب کے سب اسلام کے آنے کے بعد ہوئی ہے, اور اسلام کے پہلے زمانے کو عصر الجاہلیہ کہا جاتا ہے. تو اس سے جو ہے آپ اور ایک مسلمان کو یہ بات سمجھنے کی کافی ہے کہ ہمارا دین اسلام جو ہے علم کو کتنی بڑی اہمیت دیتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان میں سب سے جو کٹر دشمن تھا, سب سے جو ہے جو دشمن

ऐसे जाएंगे, जिसकी जिसको ये नेगेटिव सोशल कंट्रोल कहते हैं, ये इन्होंने अपना एक मेन पॉलिटिकल जहां पे इन्होंने फाइट करनी है, जो इन्होंने काम करना है, वो इन्होंने इसको अपने 77 पेज के मैनिफेस्टो में हमारे मुतल्लिक का जो चीजें हैं जिस पे फोकस होगा, वुलनिंग पॉलिसी, मिनोचेस पॉलिसी, उसमें उन्होंने ये पॉइंट रखा है। तो मेरा आपको कहने का मकसद ये है कि पहले 20 सालों में इन्होंने जो घर के बाहर जो कानून है, आप ये समझ लें, उस पर इन्होंने फोकस किया और नाटका बंद किया है। अब ये घरों के अंदर घुसना चाह रहे हैं। और मैं देखें, मैं समझता हूँ कि नेगेटिव सोशल कंट्रोल बिल्कुल गलत है। अब अपने बच्चों पे नाइंसाफी और ज्यादतियां नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब 18 साल से कम बच्चा बच्ची है, अब माँ बाप की कस्टडी है, माँ बाप जो सही समझेंगे उस तरीके की वो तालीम देंगे। हाँ, यकीनन वो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आप जो अपने बच्चों के लिए सही समझते हैं आप वही करेंगे। और लेकिन बात ये कानून की नहीं है, बात ये वैल्यूज की है, बात ये तहजीब की है। वो कहते हैं कि नहीं, आप जिस तरह अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, आप भी अपने बच्चों को इस तरह बड़ा करें, जबकि जमहूरियत में ऐसी बात है ही नहीं। आप कानून के दायरे के अंदर रहते हो, आप अपने बच्चों के लिए जो बेहतर समझते हैं आपको उसकी इजाजत है। और लेकिन ये सियासतदान जो है इसको भी अब टारगेट करेंगे इस चीज को। और मैं उसमें की मिसाल आपको दूंगा कि अभी कुछ अरसा पहले ना, इन्होंने जिस दिन हमारी पार्लियामेंट में डिबेट हुई है, तो उस दिन जो नील राव ने कंजर्वेटिव का, ये कह रहे थे कि मुसलमान जो है ये नेगेटिव सोशल कंट्रोल करते हैं अपनी बच्चियों पे। और जिस तरह की अभी स्विमिंग, अगर कुछ औरतें हैं वो बच्चियां औरतें हैं वो कहती हैं कि हम स्विमिंग जो है सिर्फ लेडीज क्लास में हम करना चाहते हैं, इसको उन्होंने अब बंद कर दिया हुकूमत ने, कम्यून ने मिसाल के तौर पे। या इन्होंने कहा कि जब आपने डांस फेस लेना है तो औरतों ने जरूर हाथ मिलाना है स्किन से स्किन लेने के लिए, या इन्होंने जिस तरह बुरखा बैन किया, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी आप कानून जानते हैं। अच्छा, अब बात यह कि जिस दिन हमारी डिबेट हुई है कोपेनहेगन पार्लियामेंट में, तो उसके अंदर दिलसफाव ने उठ के कहा है कि आप बताएं कि मुसलमानों के अलावा ये कौन करता है जबरी अपने बच्चियों पे। तो बात वही होगी जो मैं हमेशा करता हूँ, आगे से कोई बोलने वाला हो तो फिर इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वहां पे मैंने पार्लियामेंट में उठ के कहा, मैंने कहा कि आप मुझे एक बात बताएं, मतलब ये मैं अक्सर पहले भी बात कर चुका हूँ कि एक सर्वे आया था, उस सर्वे में ये उस सर्वे को इस्तेमाल करते हैं हमारे खिलाफ, कहते हैं कि एक सर्वे आया जिसमें मोर देन 40% जो मुसलमान पेरेंट्स है उनसे ये पूछा गया कि आपकी बेटी अगर किसी एथनिक डैनिश से, नॉन मुस्लिम से शादी करती है, रहना चाहती है, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। उस सर्वे में मोर देन 40% जो रिस्पोंडेंट्स थे जिन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा नहीं, हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। इस चीज को इन्होंने बहुत बड़ा इशू बनाया, उस दिन पार्लियामेंट में भी इशू बनाया। लेकिन ये बात बताना भूल जाते हैं कि यही सर्वे एथनिक डैनिश पेरेंट्स पे भी हुआ है, उसमें यह पूछा गया कि अगर आपकी बेटी एक मुसलमान बॉयफ्रेंड या मुसलमान से शादी करती है तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। राजा साहब, आप गैस करें वहां पे क्या जवाब हुआ होगा। वहां पे भी यही जवाब था, मोर देन 40% ने कहा हमारी डैनिश एथनिक डैनिश बच्ची अगर किसी मुसलमान से शादी करती है या बॉयफ्रेंड रखती है तो हम उस चीज को नापसंद करेंगे। इस फैक्ट को तो सामने नहीं लाया जाता, फैक्ट उसी को सामने लाया जाता कि मुसलमान माँ बाप ने या माइनॉरिटीज के माँ बाप ने ये कहा कि 40% ज्यादा ने कहा है कि हम नहीं पसंद करेंगे कि हमारी बेटी किसी गैर मुस्लिम से शादी करे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर ये कहते हैं कि ये नेगेटिव सोशल कंट्रोल है, तो ये नेगेटिव सोशल कंट्रोल उतने ही एथनिक डैनिश फैमिलीज में है जितने की मुसलमान फैमिलीज में है। लेकिन जब इनका अब ये पॉलिटिकल एजेंडा, जब ये अब इस मैनिफेस्टो पे जब ये काम करेंगे, तो एक सेकंड, तो उस पे जो है ये फोकस जो है नहीं करेंगे, ये सिर्फ जो है मुसलमानों पे फोकस करेंगे, ये उस पे फोकस नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जो अभी नई हुकूमत आई है उसमें हमारे हवाले से जो नरमी आनी चाहिए थी, क्योंकि देखें कि हमने 7% ने इनसे

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: سامعین ناظرین، موسم کے لحاظ سے اگر بات کریں تو موسم آج بہت اچھا ہے، بادل بھی ہیں، دھوپ بھی ہیں، لیکن موسم بہت اچھا ہے، خوشگوار موسم ہے۔ سیاسی موسم بھی اچھا بھی ہے اور ملا جلا بھی ہے۔ غیر ملکیوں کے بارے میں یا حکومت کے بارے میں، ڈنمارک کے بارے میں، ڈنمارک کے شہریوں کے بارے میں، تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں تجزیہ نگار عدنان علی امین، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاحب کیسے ہیں؟
1: اللہ کا شکر۔ عدنان آپ سنائیں۔ ٹھیک ہے عدنان، آج موسم کے لحاظ سے جو سیاسی خبریں ہیں، کیا بریکنگ نیوز لا رہے ہیں، کیا کمیٹیوں میں لوگوں کو جگہ مل رہی ہے، بہت سارے دھماکے ہو رہے ہیں سیاسی؟
2: ہاں رضا صاحب، دھماکے تو کافی ہو رہے ہیں، کیونکہ اب دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی جو بن گئی ہیں اور آہستہ آہستہ اپنا کیا کہتے ہیں کام کرنا شروع کر دیں گے۔ سب سے بڑا تو یہ ہوتا ہے نا، یہ ویل ہوتی ہے جسے کہتے ہیں فینس ویل، جس میں یہ سارا بجٹ وغیرہ اور وہ آتا ہے، اور اس میں بگیسٹ سرپرائز یہ ہے کہ اس کی جو چیئرمین ہیں وہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں انگلش لسن کی لڑکی ہے، جس کا نام وکٹوریا ویلسکوسیس ہے، کیونکہ وہ اس کی ماں جو ہے وہ ہے مل امیرکا سے، مطلب کہ وہ بھی آدھا فورم میں۔ تو ٹیکنیکلی دیکھا جائے ایک بڑی پوسٹ پہ، کیا کہتے ہیں، ایک بیک گراؤنڈ اس کا ادھر سے بھی اس کی ماں ہے اور اس کا ایک ہسٹری بھی ہے اس کے اندر، اور وہ اس پہ کیا کہتے ہیں اس ویل میں بیٹھ گئی ہے، اور اس میں سرپرائزنگ یہ ہے کہ جو وائس چیئرمین ہے وہ ٹیسٹ کر کے پر ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہہ لیں کہ یہ ایسی ویل ہوگی جس کے اندر دونوں کا کیا کہتے ہیں ٹکر کا مقابلہ ہوگا، کیونکہ انگلش لسٹ نے ایک طرف جانے لگیں گے اور وہ ڈیفینیٹلی دوسری طرف جانے لگیں گے۔ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اولینی کے پل سیٹ کے علاوہ ویسے تو ان کی کافی چیزیں آپس میں ملتی بھی ہیں، کیونکہ وہ بھی پینشن کے بول پہ بولتے ہیں اور ان چیزوں پہ بولتے ہیں، تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ایک قسم کا ان کا ہوپفلی اچھا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 10th فال کے 25 جو ہے وہ ان پہ اثرات ویل کے پرومنٹ پاس پہ وہ بیٹھ گئے ہیں، 2024 سے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کنٹینیو کریں گے، اور اسی طرح سے کیا کہتے ہیں کافی تبدیلی آئی ہے، کافی بال کیا کہتے ہیں چینج کیا گیا اور کافی کیا کہتے ہیں بال وغیرہ پھینکے گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب اپنا کام شروع کر دیں گے اور اپنی چیزیں کیا کہتے ہیں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہے ہیں اور ان پہ اب کہتے ہیں ایک قسم کا کام شروع ہو جائے گا۔ سیاسی بریکنگ نیوز تو یہ بھی ہے نا کہ 11-12-13 تاریخ کو فال کے مزہ ہوتی ہے پاول کے اندر، جہاں پہ یہ سارے کھڑے جاتے ہیں، تو یہ تو وہاں روانہ ہو گئے ہیں اور ڈیفینیٹلی وہاں پہ کیا کہتے ہیں سخت مقابلہ آئے گا، کیونکہ دو پرانے زمانے میں جس طرح ہوتے تھے بلاک، اس قسم کے بلاک آ گئے ہیں نا، کہہ رہے ہیں خود بلاک اور ایک فلو بلاک ہے، اور دیکھتے ہیں کس بار کتنے ہیوی اٹیکس ایک دوسرے پہ ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ لاسٹ لوکے پہ تو ہو رہے ہیں کہ وہ اس نے پتھاوی کی ہے فلو بلاک کے ساتھ، تو یہ تو ایک کیا کہتے ہیں سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں میں اویلینی کے تو پیر بھی بڑا ہارٹ ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ موٹر اسپورٹ کے بھی کچھ اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، ٹینس بال کے بچی پہ کچھ اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، تو وہی بات ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا بنتی ہے، کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ اس سے اور اسٹرانگ کرنا نہ ہو جائے، کیونکہ یہ کافی لوگ اس پہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس کے اندر وجہ کیا ہے، تو وجہ وہ یہی ہے کہ جو ٹینس بال کے بچی ہے اور تیمس کے مکھاڑ ہیں، ان نے اویلینی کے پل سیٹ کو بہت زیادہ اٹھایا ہوا ہے۔ ایک اور میں چیز لوگوں کو بتا دوں کہ جن کے پاسپورٹ ہولڈ ہوئے تھے الیکشن کی وجہ سے، وہ 3-4 منتھ اور نہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پاسپورٹ کی طرف آئیں گے۔ جو میں نے اس کی لیٹسٹ انفارمیشن سنی تھی وہ یہی تھا کہ ہم افتاؤ تک پہنچ جائیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ جب بیٹھتے ہیں تو کیا کیا کیا اسٹیٹمنٹ اس پہ آتی ہیں۔
1: عدنان، یہ جو فلمی ڈائلاگس کی طرح باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب اگر انہی سسٹم کی بات کریں تو وہ ان کی جو ہے اس ویل کی جو ہے وہ چیئرمین بن گئی ہیں انہی سسٹم والے، तो वो जरा जब गवर्नमेंट के फंड्स वगैरह इस्तेमाल करने में जरा वो अच्छी तरह वो इनको इस्तेमाल करते हैं लोगों पर, आप क्या कहेंगे?
2: सब मैं एक बात आपको कहूं कि वो अपनी इस बार मुझे बिलीव है कि वो उनको कुछ मिला रहा रहना हुआ तो वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को मिलता भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार वो काफी काफी क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और मेरे ख्याल से उनने अपना सबक 2012 से सीख लिया हुआ है।
1: तो दांतों के इलाज के लिए उन्होंने बड़ी खबर है इस पर, मेरा ख्याल है डेनमार्क में सभी लोग खुश हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो दांतों का इलाज इतना जल्दी फ्री कर दिया जाए वो बेहतर नहीं है?
2: राजा साहब उसके लिए पैसे की जरूरत है और वो लंबा प्रोसेस है, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि अभी ये कम से कम सिर्फ इलाज करने का नहीं होता, पैसे का भी होता है, दूसरा कैपेसिटेट का भी होता है। आपने फ्री करना है तो आपके पास 1000 कमी है डेंटिस्ट की, 10 प्लायर की और 10 क्लिनिक असिस्टेंट की, तो आपने पूरे पैकेज को क्या कहते हैं देखना है। और आप टेक्निकली देखें तो ये बात इंग्लिश लिस्टर ने अपनी क्या कहते हैं काफी सालों से क्या कहते हैं वो लेके आ रहे थे और उनकी काफी हाश थी। इसके अंदर दो पहलू भी हो सकते हैं जो जो देखा जाए तो बंदा कह सकते हैं कि इसके काफी वेयर्स हैं और इसको एक पैकेज की तरह बनाया जाएगा और जो इरागन है जो नई सोनस मिश्रा बनी है वो डेफिनेटली इस पैकेज को बैठ के देखेगी ना कि किस तरह से इसको काम को आगे लेके जाने। फर्स्ट आम काम तो यही है ना कि फर्स्ट पंक्चर और जिनकी कम इनकम है उनको डेंटिस्ट फ्री दी जाएगी, वो भी एक या दो दफा ट्रीटमेंट जो होती है ना साल के अंदर, इस तरह का पैकेज है। ज्यादा आपने कुछ जाना है तो फिर वो क्या कहते हैं उस चीज को अपनी तरफ से जाने। इसके अंदर ये भी पहलू है कि ये देख रहे हैं कि आपको पता है कि एक कैंपेन ने पूरा फ्री कर दिया था डॉक्टर की तरफ से कि आपको कुछ पीरियड होता था पड़ा और डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उसमें भी शायद ये कुछ पैसा वहां से तबील करके ला के इस तरफ इस पैड में फेंक दें, ये भी सोच रहे हैं। तो ये एक बंदा कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जिसको बनाया जाएगा और जिसको क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की जाएगी।
1: सबसे पहले जिस तरह बच्चे घरों में बैठकर गेम्स वगैरह खेलते हैं, कंप्यूटर पे खेलते हैं, टेलीफोन पे खेलते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो सियासतदान है वो भी एक किस्म की गेम खेलते हैं अपने पब्लिक के साथ, अपने वोटर सपोर्टर्स के साथ?
2: नहीं राजा साहब, अपनी अपना वो कोशिश तो अपनी कर रहे हैं ना इस वक्त। मसला ये होता है कि पैसा जो है ना इस्तेमाल करना आसान होता है, अंदर लाना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं एक आपको बात कहूँ कि एक होता है कि हर चीज का होता है, कोशिश वो करेंगे अपनी तरह से। अब सारी गेम तो कोई खेलता है क्योंकि हर एक अपनी क्या कहते हैं अपनी सीट का होता है और अपनी क्या कहते हैं पावर का होता है, मगर ये भी पता है लोगों को कि ये जो बात इनने कर दी है ना इसके अंदर वोट बैंक बहुत है। इंग्लिश लिस्ट वाले कभी पीछे नहीं हटेंगे, वो देख रहे हैं कि हम पीछे हट गए तो हम भी खत्म है, तो वो तो पीछे नहीं हटेंगे। मगर इस पे डाउट इसलिए पड़ा था कि कौन होता है, लास्ट व्यू के ने कह दिया था कि कोई पता नहीं होता है कि नहीं होता, क्योंकि उसके वो फिर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन चीजों की पड़ जाती है कि आप लोग अंदर क्या करके आए हो। अभी डिबेट चल रही है कि सारा फिनिशर प्लेस नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि जब वो बैठेगा नया फैंस मिनिस्टर स्टार्ट टीम बैठेगी। अब टेक्निकली देखे ना कि सारे मैं यही देख रहा था कि बहुत सारे फैंस नए आ गए, पुराने हट गए, तो जब वो सारी उजवेल बैठेगी सब अपने आइडियाज देंगे, सब बैठ के इसको कोशिश करेंगे कि इसका कोई ना कोई क्या कहते हैं वे थ्रू निकले। क्योंकि बिजता वाले ने तो ये किया है ना कि जो उनका चेयरमैन है उसने कहा है कि जो हमारी वाइस चेयरमैन है पार्टी की इकोमोनली की पॉलिसी सारी वो चलाएगी, और इसी तरह हर पार्टी अपना क्या कहते हैं ना बंदा देगी जिसने नेगोशिएशन करनी है। और सबसे बड़ा बात ही एक मोनोली पे चलती है कि पैसे कहाँ से आने हैं, पैसे कहाँ से होने हैं और पैसे को कैसे चलाना है। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर डेज में कमिंग डेज में कैसे ये
1: अदनान कल्चर मिनिस्ट्री किसके पास गई है?
2: कल्चर मिनिस्ट्री सीनियर स्टाम्पे के पास, जो उसके पास है।
1: तो आप देखते हैं कि गैर मुल्कियों के लिए बात तो बड़ी करते हैं, सैफ वाले भी बड़ी बात करते हैं, रेडिकल वेंस्टा वाले भी हमेशा वोट्स लेते हैं, तो आप देख रहे हैं कि सोशल डेमोक्रेट के जो इंटीग्रेशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान दिया, तो अब बात तो पता लगेगी कि जो जो इन पार्टियों में वो किस तरह अपना रोल अदा करेंगे।
2: सर आप एक चीज हमेशा याद रखना कि उलनिए पॉलिटिकन का जो नेगोशिएशन इस किंग्स कॉलेज के अंदर नहीं लिखा गया हुआ, मगर उसके अंदर ये बात है कि ये सबको मालूम है कि जो गवर्नमेंट इस वक्त बैठी हुई है वो सिटिंग गवर्नमेंट है। आप टेक्निकली देखें तो उसके अंदर से लास्ट लगेगा और मेरे ख्याल उनके मंत्रिता डाले जाए ना तो वो बन जाते हैं करीबन 52, और वो मतलब पहले ही उस ब्लॉक के अंदर क्लियर चल है कि चाहिए। टेक्निकली पार्लियामेंट के अंदर फिर आप लोग प्रिंस का भी डाल लें, नेपाल भी डाल लें, पैसवाल के पक्षी भी डाल लें, भी डाल लें, तो उलनिए पुलसी जो बन गई हुई है वो वहां पे ही रहेगी और हो सकता है कि उससे थोड़ी सख्त हो जाए, मगर वो देखा जाएगा। क्योंकि जैसे बात चल रही है अभी कि हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं जो उन लोग हैं, हम लोगों को बाहर से किसी इंक्लूडिंग डांसर को भी ये मसला है कि वो लोग शादी कर लें या कोई चीज कर लें तो उनके लिए बड़ी मुश्किल है, मगर जो नया बंदा ला रहा है साउथ एशिया से जिसमें वो पूरी फैमिली के साथ आ रहा है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ना ये बहुत देखी जा रही है
1: ना। तो ये तो गैर मुल्कियों को पूछना चाहिए ना कि अगर आपने जिन जिन को वोट दिए वो बोलते क्यों नहीं है।
2: अरे सब ये तो वो उनको ही पता है ना, ये तो क्वेश्चन इसलिए होता है कि मैं आपको एक एक एक, एक मिसाल दे देता हूँ कि मैं एक ये इलेक्शन जब हो रहा था, इलेक्शन के दिनों में जो बैट हो रही थी वहां पे ना एक छोटी सारी बात शुरू हो गई क्योंकि रुमाल पे चॉकलेट पर बैट शुरू हो गया और वो प्रिपरेशन के साथ आए हुए, तो मुझे पता था मेरे साथ बैठा हुआ था वो, उसकी भी पहनती थी वो जीप जीप स्टैंड उसके थे, मैं ये मेरी बीवी का राज था वो ये कहते आ तेरी कहते आ तेरी भी शामत आ जाएगी। मैंने कहा देख मैं कहता हूँ मेरी शामत नहीं आएगी, ये चुप कर जाएंगे। वो कहते हैं, मैंने कहा एक बात मुझे बता, तुमने मुझे सवाल ही कौन सा किया, मैंने कहा मुझे एक बात बता, तुम्हारी भी शादी हुई, कहता हूँ कहते तुम अपनी बीवी की डिसीशन सपोर्ट नहीं करते, कहते मैं बीवी अपनी बीवी की डिसीशन सपोर्ट नहीं करनी तो किसकी डिसीशन सपोर्ट करनी है, तो तू मैंने को उसे कहा तो तू मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं क्या करूं कि मैं अपनी बीवी का गेस चला जाऊं कि वो रुमाल पहनती है, और उधर जितनी सेल्स थी वो सारे चुप हो गए, वो सारा एक बात में बंदा कहता तूने जवाब, मैंने कहा तो मैंने उसको जवाब सही दिया, उसने कहा कि वो अपनी बीवी को सपोर्ट करेगा मैं सपोर्ट करूं, मैंने कहा बात होती है आप करने की, अब जितनी पार्टी वाले ये सारे बैठे हुए हैं इन लोगों को ये सवाल अपनी पार्टी से पूछना चाहिए। मैंने जब पूछा था तो वो यही कह रहे थे कि हम आपस की तरह हमने किया, अब इसको हम तब्दील करेंगे वो करेंगे, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अब देखते हैं, अब नया बैठे मौजूद को मैं डेफिनेटली उससे पूछूंगा कि आप लोग वहां से तो खुला ला रहे हैं मगर जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं आप उनको बोलते नहीं देंगे तो वो मुल्क छोड़ के चले जाएं या कुछ करें तो आपकी तो प्रॉब्लम सेम है, इसलिए आपको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ये करनी चाहिए कि जो यहाँ पे है उनको सारी सहूलतें दें, उसके बाद दूसरी तरफ जाके देखें कि आपको कितने लोगों की जरूरत है, क्योंकि यहाँ के लोग छोड़ते जाएंगे आप बाहर से लाते जाएंगे, मौत में वही बयान देने अगले इलेक्शन में एक अंदर आए एक बार आए। मैंने कहा उस डिबेट को खत्म करना है तो कोई और तरीका करना पड़े, ये नहीं कि हम सेम तरीका बार बार एक करते रहे और वो भी बार बार एक बात करता रहे और हमारे सारे कहते कान जो है ना वो तांगे पड़ते हैं इस बात को सुन सुन के, और फिर में ये हो कि हम के चलो मार्च पे ही असी कुछ और ही करिए।
1: अदनान जी आखिरी सवाल है, इसी पर क्लोजिंग करेंगे, आपका तजिया क्या कहता है कि गैर मुल्की जिन पार्टियों में आने वाले दिनों में क्या करेंगे?
2: मैं इस पे कॉमर्स कुछ नहीं दे सकता क्योंकि मैं आपको सच बात बताऊं मुझे नहीं पता, मैंने आप जैसे आपको पहले भी कहा है मैंने आज भी कहा है कि अब एक गैर मुल्कियों को एक किस्म का क्या कहते हैं स्टैंड लेना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपका मेरे से बड़े हैं, आपका बहुत बड़ा तजुर्बा है, आपने कभी देखा होगा कि पाकिस्तानी कमेटी कोई बड़ा सा इन्वेंट कर सकी होगा उस प्लेस पे कर सके नहीं, देखिए जहां तक मेरा नॉलेज है इंडियन यहाँ पे हमारे बाद आए हैं वो ने परमिशन लेके वो उस प्लेस पे एक बड़ा इन्वेंट करने लगे क्योंकि उनके पीछे कुछ लोग आ गए, तो यहाँ से हमें सबक सीखना चाहिए कि हमारे से लोग पीछे से आके کیا کہتے ہیں چیزیں کرنے لگ پڑے تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہم تو ادھر اب کہہ لیں تقریباً 56-60 سالوں سے 56 سال ہو گئے ہمیں یہاں پہ، تو ہم بھی تو کچھ کر سکتے ہیں۔
1: بڑی اچھی بات کی ہے، انشاءاللہ اس پر بات چیت جاری رہے گی۔ عدنان آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا۔
2: اوکے، اللہ حافظ۔
1: سامعین ناظرین، یہ تھے عدنان امین علی، جو کہ تجزیہ کرتے ہیں اور اپنی رائے بھی دیتے ہیں۔ ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، اگر آپ کچھ بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی ہمارا آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے۔
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सामाईन नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर हाजिर है। सामईन, आज इन्फॉर्मेशन के हवाले से हम बात करेंगे। आपको पता है कि नई हुकूमत बन गई है, मिनिस्ट्रियाँ भी आ गई हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो मैं जो है वो माइक जो है इस वक्त शाह साहब के हवाले करता हूँ। सैयद तकीर हसन बुखारी शाह साहब और अदनान अली अमीन हमारे साथ हैं, माइक में शाह साहब के हवाले करता हूँ। जी शाह साहब।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको, अदनान को और आपकी टीम को, आपके जितने लिस्टर और नाजरीन है सबको सलाम अलैकुम। आज खुशी का दिन है, आज गदीर कुम का दिन है, जहां रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था 18 ज़िलहज को कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, और ये इस्लाम के लिए बहुत बड़ी ईद का दिन है, खुशी का दिन है। और अख्तलाफात राय अपनी जगह, लेकिन जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है या उनके जो अकवाल हैं उनको मानना हर मुसलमान का फर्ज है। आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ के लोकल जो नेशनल लेवल पे जो इलेक्शन हुए हैं, जिनको इतनी देर लगी है हुकूमत बनाने में, क्योंकि सबको याद होगा कि हम ये कहते रहे हैं इसी रेडियो पे, इसी प्लेटफॉर्म पे कि पीडीएम की गवर्नमेंट बनेगी। पीडीएम का मतलब है कि मिक्स गवर्नमेंट बनेगी और इनके सपोर्टर वही होंगे या एक आधा सपोर्टर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस दफा भी मैं अदनान से, जो कि सोशल डेमोक्रेट के बहुत ही अच्छे वर्कर हैं और सियासी वर्कर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, इनका एल्बर्सोन और वेस्टाइन और कोपेनहेगन में काफी मकाम है, ये यंग आदमी है और ये सियासत को समझते हैं। हम जानना चाहते हैं कि इनसे कि पहले तो ये बताएं कि ये जो इस वक्त गवर्नमेंट बनी है इसमें कितने डेनिश फॉरनर्स को सीट मिली है और कौन कौन से महकमे मिले हैं। जी अदनान साहब।
3: वालेकुम अस्सलाम शाह साहब और राजा साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं व्यूअर्स से कहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट बनी है ये सेकंड टाइम है, कितने दिन लगे हैं। लास्ट टाइम जब मेरे फर्स्ट ने बनाई थी तो उसकी उम्र का रिकॉर्ड था, मगर ये रिकॉर्ड तो कह रहे काफी बड़ा बन गया। और इसलिए इसपे ये भी है कि ये तीन खोंग होता के बाद गवर्नमेंट बनी, तो बंदा कह रहे कि ये क्या कहते हैं लंबा टाइम लगा। और इसमें बंदा कह सकते कि ये बड़ा मुश्किल भी था, क्योंकि लास्ट वीकेंड किसी को नहीं थी समझ आ रही कि वो पैर कह रहा है और उसकी वजह से है। दूसरी बात, ये हुकूमत जो बनी है इसके अंदर टेक्निकली देखा जाए तो दो फीमेल्स हैं जिनके फॉरेन बैकग्राउंड हैं, उसमें से एक है मुसलमान और एक है जिसका क्या कहते हैं मिक्स बैकग्राउंड है, क्योंकि उसका जियो सिस्टम से भी तलक है और उसका क्रिश्चन से तलक है। जहां तक मुझे पता है वो है मोनिका रूबिन, जो लास्ट लुक की पार्टी की है, मुड़गाटा की है, सेकंड टाइम वो इलेक्ट हुई है। पहली दफा वो इलेक्ट हुई थी 2022 में, क्योंकि पहली दफा जब मुड़गाटा खड़े हुए थे। और दूसरा यसमिया जो है गडीखेल वेंस्टा की मुसलमान है और गडीखेल वेंस्टा की क्या कहते हैं इकमोनली फ्रेंस वॉरफेयर थी, इकोनॉमी वॉरफेयर थी और पता नहीं क्या क्या थी, सारी फ्रेंस का हैंडल वही करती थी। और टेक्निकली उसने एक और चीज की है लोगों को व्यूअर्स कर दें कि वो खाली मिस्त्री की तरह बैठेगी, उसने अपना जो फॉर्किंग स्कैप है वो ऑल आउट दे लिया, मतलब कि वो वोट नहीं कर सकेगी, वो खाली मिस्त्री की तरह बैठेगी। मोनिका रूबिन दोनों सीटों पर बैठी हुई है, उसने नहीं दिया ऑल आउट, उसने भी लिया। और जहां तक मुझे पता है सीना स्टंपन जो उसकी कोलीग है उसने भी लिया वाला हूँ। तो ये दोनों जो है ये खाली मिस्ट्री की तरह बैठेंगे पहला साल और उसके बाद देखते हैं कि क्या है। इसमें एक और चीज ये है कि ये पहली हुकूमत है डेनमार्क की हिस्ट्री की जिसमें फीमेल्स ज्यादा हैं। इसमें फीमेल्स क्या कह लें 11 हैं और 10 मर्द हैं, जिसमें से हुकूमत का फतेलिंग ऐसे हुई है कि 9 मिली हुकूमत जो बनी है उसका भी बता देते हैं, वो है सुशैल कमकुत, वो है एसएफ, वो है मुड़गाना اور وہ ہے غڑیکیل ایونٹس کا. اس میں سے یہ ہوا ہے کہ 9 جو ہیں وہ مسٹر ہیں سوشل ڈیموکریٹس کے, 5 ہیں ایس ایف کے, 4 ہیں مڈوانا کے اور 3 ہیں غڑیکیل ایونٹس کے. پچھلی بار 25 مسٹریاں بنی تھی, اس بار 21 مسٹریاں بنی ہیں. اس بار ان نے کچھ مسٹریاں کام کر دی ہیں. اس میں سے بگیسٹ

0: उसको वो यहीं से तलक रखते हैं, वेस्टाइन से, और वो सोशल डेमोक्रेट के हैं। तो आप क्या समझते हैं कि उनकी जो बैकग्राउंड है, वो आए तो यूलैंड से हैं, लेकिन यहाँ वेस्टाइन में रहते हुए वो फॉरनर्स के साथ उनके काफी रिश्ते हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि वो इंटीग्रेशन की मिनिस्ट्री जो है, ये वुलेनिंग और इंटीग्रेशन, इसको वो संभाल पाएंगे और ठीक तरीके से वो इसको चला सकेंगे?
1: शाह साहब जो बहुत को है ना, उसको मैं खुद जानता हूँ पर्सनली, क्योंकि वो मेरे साथ ही होता था 2000 में जब हमने ज्वाइन की थी पार्टी। उसके बैकग्राउंड को मैं जानता हूँ और उसके नॉलेज को भी मैं जानता हूँ। मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस के हिसाब से वो अपने दिमाग से चला ना, तो वो क्या कहते हैं इस मिस्टेरियम को हैंडल कर जाएगा। कि उसके अंदर दो वजह है उसके लिए, उसके अंदर दो वजह ये है कि जो बैकअप है ना उसके लिए, जिस टाइम पार्टी होती है उसके अंदर उसके पीछे मच्छी चस्फाए होगा, वो परफॉर्मेंस वो है पार्टी का, और उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है लर्निंग मिनिस्ट्री में, तो डेफिनेटली। और दूसरी बात ये है कि आप लोग मौत को जो है ना, वो वही मिनिस्टर है जो अभी तक जितनी सोशल डेमोक्रेट की गवर्नमेंट्स बनी है ना 2000 से लेके, वो उनमें शामिल है। और वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो बड़ा मशहूर है, आपको पता होगा, पोन्न्यू रास्मुसन, वो उसका
0: जी
1: स्टूडेंट है, वो उसका स्टूडेंट है। तो मेरे ख्याल से वो फॉरेन मिनिस्ट्री को संभाल जाएगा। वो फॉरेन मिनिस्ट्री को इस तरह से संभालेगा कि मेरा जो मैं जो मैं दाय तो नहीं कर सकता, मगर वो इस तरह से संभालेगा कि वो बैलेंस की तरह संभालेगा। वो इस तरह नहीं है कि वो जिस तरह बाकी सारे क्या कहते हैं हार्ड लाइन की तरफ नहीं जाएगा। पहले ही आप उसकी स्टेटमेंट देख लें तो उसने ये कहा है कि मैं जो क्राइम करते हैं, जैसे ये आप मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि एक टॉप 10 लिस्ट थी जिसके अंदर शॉकिंग पॉइंट था, जिसपे सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है और सबसे ज्यादा क्या कहते हैं जिसपे बंदा लगा रहा है, और आज भी कल रात को भी उसकी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है कि उसको EU में भी मारने लगे हैं। तो मैं तो तौबा कर रहा हूँ कि उसकी EU पहले वो नंबर 2 पे छिवगी कर रहे हैं, तो नंबर 1 पे हो गए तो क्या होगा इस मुल्क की हालत, आप खुद गेस
0: जी
1: कर लें कि जब ओपन बॉर्डर होगा तो फिर तो जो है, तो वो मेरे ख्याल से वो हैंडल कर जाएगा।
0: जी
1: बैकग्राउंड उसका
0: मेरा एक सवाल है। इस वक्त हमारे साथ मीडिया डायरेक्टर भी हैं और कम्युनिटी के चेयरमैन भी हैं, राजा फूर साहब, वो भी सुन रहे हैं, उन्हीं के प्रोग्राम पे हम बात कर रहे हैं। क्या आप बहुत ही नजदीक फ्यूचर के अंदर आप कम्युनिटी के जो कुछ लीडरान हैं, जैसे राजा साहब हैं, मियां मुनीर साहब हैं, दूसरे जो सियासतदान हैं, इन लोगों की मुलाकात जो है कोशिश करेंगे कि मॉडर्न बुस्को के साथ हो, ताकि जो हमारी जो रहने वाले, जो हम 70s से लेके अब तक यहाँ रहने वाले फॉरनर्स हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं और जो जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वुलेनिंग और इंटीग्रेशन के दरमियान, उसके ऊपर कोई वो हमसे बातचीत करे, तो क्या इसका कोई इम्कान है कि आप उनको टेबल पे लाने पे कामयाब हो जाएंगे?
1: राजेश साहब, मैं कोशिश कर सकता हूँ और मुझे पता है कि वो हमें टाइम भी दे देंगे, और मैं ये इंशाल्लाह ताला आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैं कमिंग डेज में मचियर से बात कर लूंगा, क्योंकि अब वो तो कूपर फॉर्मैन है और वो यहाँ सिटी में ही रहता है। मैं उसको एक मेल लिखूंगा कि हमारी कम्युनिटी है तो तुम कोई मीटिंग अरेंज कर सकते हो, तो मैं 100% श्योर हूँ कि वो कोशिश अपनी तरफ से करेगा, और इंशाल्लाह ताला समर, अभी तो ये समर वेकेशन पे चले जाएंगे और सितंबर अक्टूबर में वो डेफिनेटली जब वो अपनी क्या कहते हैं जिम्मेदारी संभाल लेगा और अपनी क्या कहते हैं सारी सूरत हाल
0: जी
1: देख लेगा। क्योंकि मैं ये आपको बता दूं कि वो आज ही काम पे शुरू हो गया हुआ है, और वो आज वो ब्रजल में है, और दूसरा जस्टिस मिस्टर वो उधर है लुक्सम्बर्ग में। सो आप चाहेंगे तो हम कोशिश कर देंगे, और कोई ना कोई मीटिंग जरूर हो जाएगी, और आप अपना जो पॉइंट्स उसके साथ डिस्कशन करना चाहेंगे वो मैं आपको बता दूं कि मैं उसको 2000 से सदी से जानता हूं, जब वो TSU का फॉर्मैन था, और वो हर चीज को नोट करता है और हर चीज को देखता है। और आपको मैं ये भी नॉलेज इंफॉर्मेशन दे दूं कि वो 2011 की जो हिल्चर्न स्मिथ की गवर्नमेंट थी उसके एक पीरियड में वो जस्टिस मिस्टर

0: बारे में आप क्या फरमाएंगे?
1: अस्सलाम वालेकुम सबको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो यही कहूंगा कि आज ये कॉनलॉस डे था और इस पे तो आज स्पीच वगैरह हुई है डिफरेंट, क्योंकि जैसे आपको सबको मालूम है 2 दिन पहले नई इलेक्ट गवर्नमेंट बैठी थी और उसके अंदर क्या कहते हैं सबकी अपनी अपनी स्पीच होती है और डेफिनेटली था उसके अंदर लास्ट वीक को टारगेट किया गया था प्लॉट ब्लॉक से, क्योंकि उन्होंने उसको ऑफर दी थी। और दूसरा ये कि जो क्या कहते हैं मौत मिसेस में थे उस पर बस जैसे कहते टारगेट किया था सुशील तो कुछ के शायद वो मिले नहीं है पुल सिंह पे लिपा करेंगे, मगर ये उस बात को उसने शायद मेरे ख्याल से इसको ये नहीं पता कि लिपा करने के लिए 90 सीटें चाहिए होती हैं, वो तो इनके पास नहीं है। तो इसलिए बंदा कह सकता है कि ये बस एक किस्म का गवर्नमेंट की तरफ ही इनने टारगेट्स किए थे और अपनी अपनी स्पीच की थी। उसके अंदर ये था कि सबको इंतराज एक चीज का था लोगों को कि प्राइम मिनिस्टर शायद अपना कुछ स्टेटमेंट इस कॉनलॉस पे देगी, मगर वो बोले वो नहीं थी आज इधर डेनमार्क में, वो किसी यू की मीटिंग में थी तो इसलिए उसने आज स्पीच नहीं की। उसके दोनों नेक्स्ट फॉर्मर ने स्पीच की है और वही जो शुरू हुआ था कि कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा सुशील तमकुत्सु में, क्योंकि उसने एक तब्दीली की थी अपनी बैंक गवर्नमेंट में के फाइनेंस मिनिस्टर जस्टिन मिस्टर को बदल दिया था, मगर उसकी भी एक लॉन्ग सेक्टर वजह है, वो आस्ता आस्ता बाहर आ जाएगी कि उसके अंदर वजह क्या है कि वो क्यों चेंज किया गया है। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे।
0: शुक्रिया अदनान। शाह साहब, आपने अदनान की बात सुनी, आज जो छुट्टी 30 दिन के हवाले से, शाह साहब आप क्या फरमाएंगे?
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोनों साथियों को, मुजीब कुरैशी साहब, मेरे छोटे भाई इदनान बेटो, जैसे आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ग्रून लॉस डे होता है, ये होता है आइन आइन का दिन, जिस दिन डेनमार्क का आइन बना था। आइन लोगों को समझना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हम उर्दू में आइन कहते हैं और डेनिश में उसको ग्रून लॉ कहते हैं। तो ये आज के दिन इन्होंने नफाद किया था डेनमार्क के अंदर। लेकिन ग्रून लॉ के बाद जो दूसरे कानून बने हैं इस मुल्क के अंदर, उसके पर उस पर हम गाय गाय उसके ऊपर हम रोशनी डालते रहते हैं, लेकिन वो बात वही है कि भैंस के सामने बैठ के तो वो बीन बजाने वाली। तो राजा साहब, आज का दिन जो था ये बड़ा मसरूफ रहा है। आधे लोग बाज लोग आधे काम आधे दिन काम पे गए थे, बाज लोगों को पूरे दिन की छुट्टी थी और बाज लोग पूरे दिन काम पे गए हैं। तो अब जो बात है कि ये गवर्नमेंट जो बनी है, गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, इसके क्या चीजें हैं, आज की अखबारों में सबसे बड़ी हाइलाइट्स इन्होंने जो की है वो ये है कि इन्होंने कहा कि ये क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन जो इन्होंने मुआहदा किया है, जिसको कहते हैं कि भाई एक बुनियादी मुआहदा करती है हर हुकूमत जब बनती है, तो वो एक बुनियाद रखती है कि हम इसके ऊपर आगे जाके तो हुकूमत को जो है उसकी उसको चलाएंगे। तो उसमें इसको हसाई मुल्क तो जाहिर किया गया, लेकिन जैसे पहले थी पिछली हुकूमत या उससे पहले कि भाई मजहबों को आजादी होगी, उसके ऊपर इन्होंने बात नहीं की। इससे कुछ खतरे की बू इसलिए आ रही है कि कहीं ये डेंस फुलके पार्टी या दूसरी पार्टियों के साथ मिलके तो कोई ऐसा काम तो नहीं करने जा रहे जिससे फ्यूचर में जो बाहर के लोग इस मुल्क के अंदर रहते हैं या खुद डेंशों के साथ क्या होने वाला है, इसके ऊपर हम कोई राय नहीं दे सकते अभी। लेकिन देखेंगे कि जब मेटे फेडरिकसन वापस आती है तो वो क्या करती है। उसने हुकूमत बनानी थी, हर सूरत में हुकूमत बनानी थी, उसने वो हुकूमत बना ली। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो ये कहा जा रहा है जी कि सोशल डेमोक्रेट दूसरी गवर्नमेंटों के साथ दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करेगी। हम ये देखें कि SF ने क्या अपने मुतालबात मंजूर कराए, अभी तक अखबारों में नहीं आए। जो है रेडिकल वेंसा, उसने कौन से मुतालबात सामने रखे हैं वो अभी तक नहीं आए। तो सोशल
0: शाह साहब,
2: डेमोक्रेट
0: ये
2: के तो
0: बिल्ली
2: और
0: थैले से बाहर आ जाएगी, ये मुजीब साहब से पूछते हैं कि मुजीब साहब ने भी चूंकि SF ज्वाइन कर ली है तो अभी तो नए मराइल में, अभी ताज़ा ताज़ा मेंबर बने। मुजीब साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, आप इस दिन के हवाले से क्या फरमाएंगे?
3: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम मेरे प्यारे बड़े भाई तौकीर शाह।

0: साहब और मेरे बरखुरदार अदनान साहब, सबको और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: ऐसा है जी कि
1: वालेकुम
0: अभी
1: अस्सलाम।
0: दोनों दोनों माशाल्लाह जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने ग्रोनलोड डे के मुतलक तफसीलन बता दिया है कि ये दिन क्या होता है। जैसे मोहतरम शाह साहब ने अपनी कहा कि ये आइन के लिए आइन इस दिन बना था, और कुछ लोग छुट्टी पे, कुछ लोग आधी छुट्टी पे, कुछ लोग पूरा दिन काम पे, यानी कि मिला जुला रुझान था। अब आते हैं कि जो हुकूमत बन गई है, तो मैं सबसे पहले सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि काफी महीने लगने के बाद एक दिन एक जगह पे आके मुख्तलिफ पार्टियां जो हैं वो बैठी हैं और उन्होंने हुकूमत को हुकूमत साजी कर ली है। तो मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी हुकूमत साजी में जमातें शामिल हैं, ये बड़े सोच समझ के इन्होंने बैठ के ये फैसले किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि अवाम की बेहतरी के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए ये जरूर सोचेंगे। जैसे देखे खबरों में आ रहा है कि थैले को फ्री होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट फ्री होनी चाहिए, पार्किंग के मसाइल हैं, और आपको पता है एल्ड्रा जो हमारे प्लाई एम है, और सेहत के शोबे हैं, और बेशुमार जगह स्कूल हैं ताकि वहां पे कुछ बेहतरी आए। तो मेरा ख्याल है ये सारी जमातें को कुछ ना कुछ इंशाल्लाह अवाम को जरूर देंगी, क्योंकि अभी जैसे हालात चल रहे हैं और जैसे ही जमातों के इलेक्शन के बाद रिजल्ट आया है, वो आपने देखा है कि अवाम ने ऐसे ही लोगों को ऐसे मुंतखब किया है कि उन्होंने ये बता दिया है जी कि आप जो हमारे अगर मुतालबात या हमारी चीजें सही सीमत में नहीं लेके आते तो आपका यही असर करेंगे। इतनी बड़ी पार्टी जो कि 50 से ऊपर मैंडेट लेती थी, सोशल डेमोक्रेट वो 38 पे आ गई है, ऐसी और भी पार्टियां जो है जिन्होंने कम मैंडेट हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हुकूमत बनी है ये मुल्क के लिए और आवाम के लिए कुछ ना कुछ जरूर बेहतर जो है वो चीजें ले। अभी शुरू शुरू में आपको पता है तनकीद भी होगी, बेशुमार चीजें ऐसी आएंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभी 3 4 महीने 6 महीने में आफ्टर अगर जूल कह लें, नया साल जब स्टार्ट होगा तो फाइनेंस लो फाइनेंस का जो जब स्टार्ट होता है साल, तो फिर मुझे उम्मीद है किसी न किसी चीज में बेहतरी आएगी। जैसे उन्होंने कहा है फुकरून के ऊपर से हमने मम्स उठा लिया है, और चीजों पे हम ऐसे कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का वो सोच रहे हैं 22 साल तक, और भी काफी चीजें जो है कि पाइपलाइन में है। अदनान को और मोहतरम शाह साहब को बेहतर पता है, लेकिन मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि इनशाला ये हुकूमत जो है अगर इसने अपनी कारकर्दगी दिखाई तो ये कामयाब होगी, नहीं कारकर्दगी दिखाएगी तो शर्त तो फिर आपको पता है अवाम यहाँ पे तो डेमोक्रेट डेमोक्रेसी चलती है, अपने वोट के जरिए हुकूमतों को आगे पीछे ये करते रहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है इनशाला डेनमार्क के लिए बेहतरी होगी।
2: बहुत शुक्रिया मुजीब साहब। अदनान, आपने दोनों साथियों की बातें सुनी, उन्होंने बताया डिमांड्स भी कर रहे हैं। तो आपने देखा जिस दिन हुकूमत बनी सारे वज़रा जो है मिनिस्टर्स बाहर आ रहे थे, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें कि सब जो है माशाल्लाह बड़े खुश थे, जैसे कोई मैदान जो है वो फतह करके बाहर निकले हैं। तो अब ये मुजीब साहब ने फरमाया कि इन सिस्टर ने कहा जी कि दांतों का इलाज फ्री होगा, तो ये सारी चीज़ें आप पहले से भी नोट करते रहते हैं, तो एज ए तजिया निगार आप इन चीज़ों को किस तरह देख रहे हैं?
1: राजा साहब, मैं इसमें ये कहूंगा कि आज कौन लोग थे था, और यहाँ पे जैसे आपको पता है फॉर्मल एजुकेशन मिनिस्टर जो मैथ्स से था वो भी आज आया हुआ था, और वो कोपे फॉर्म है जो जो पार्टी को लीड करता है, और उससे सबकी बात हो रही थी। तो उसने एक ब्रेकिंग न्यूज हमें दी थी कि मैं फैंसूर वैली में बैठा हूँ जहाँ से ये सारे पैसे वगैरह निकलते हैं। तो वो यही कह रहा था कि आप सबने एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमने जो वादे किए हैं ना उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, और अभी हम उसपे क्या कहते हैं पूरा हमने जो प्लान है वो एक प्लान बना बैठा हुआ है, मगर उसके अंदर ये है कि आस्ता आस्ता चीजें जो है ना वो बाहर आएंगी। सबसे पहले प्रायोरिटी मैं आपको कह दूं, जिस तरह ये मजी साहब ने कहा है कि इनकी ये है कि ये मॉम्स वगैरह इसको क्या कहते हैं खत्म करना है और इसको कंट्रोल करना है, और बेंजीन को और डीजल और इन चीजों को देखना। उसके बाद इनका प्लान ये है कि ये जो डिबेट शुरू हो गई है ना कि पहली मुसलमान बन गई है, तो ये एक क्या कहते हैं एक सारी मुल्क है तो हम उस तरफ जाने की जरूरत है, मगर उसमें भी एक मसाइल है जो बात अब क्लियर की जाए कि बंदे ने ये भी देखना है कि मुस्लिम वर्ल्ड के साथ इनका बीएमपी जीएमपी बिजनेस कितना है, तो इनने ये भी बैलेंस रखना है कि इनकी इकोनॉमी कैसे चले। आप पूरा पंगा डाल लें मुस्लिम के साथ तो आपके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं कि मौत मेरे में इतने ज्यादा ही क्या कहते हैं बात करने की जरूरत होती है, मगर बंदे को थोड़ा बहुत क्या कहते हैं सीरियस भी होना पड़ता है और हर चीज को देखना पड़ता है, और हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जब मेरे फादर्स में बैठ जाएगी, हमारा भी लर्निंग मिनिस्टर भी बैठ जाएगा, तो हम इससे जरा बात करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग जरा सब्र करें और थोड़ी क्या कहते हैं आप लोग ये देखें कि इसके अंदर मुसलमान को टारगेट करने का क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो मैं आपको एक छोटी सारी मिसाल दे देता हूँ कि मैंने आज कुछ लोग कुछ जगह पे हम लोग गए और हमने वहां पे देखा कि मुसलमान बाहर हो जाए तो 70% चीज ही नहीं बचल। तो इसलिए ये तो थोड़ी बहुत सेंसिबल बात करनी चाहिए और सेंसिबल देखना चाहिए। बोलना बड़ा आसान होता है, काम करना बड़ा मुश्किल होता है। इतना आसान होता तो मिस्टर स्मिथ को जब मौका मिला था ना गवर्नमेंट बनाने का तो गवर्नमेंट बना लेता, मगर उसने नहीं दिया चांसेस, तब उसकी मर्जी। आप दूसरे जिन्हें चांसेस दिए उनको बैठने दे और उनको काम करने दे और उसको मौका तो देंगे, वो तो कोई उसको हमने बात तो नहीं निकाला होगा। कोई काम करना चाहेगा तो सोबत बिना टेबल पे आ जाए, उसकी अपनी मर्जी है। बैठ के बोलना चाहता है बोलता रहे, मगर हम लोगों ने जिनने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उन लोगों ने तो काम करना है और इस मुल्क को चलाना है किसी ना किसी तरह, तो ये तो अब उसकी मर्जी है कि वो क्या करना चाहते हैं।
2: शाह साहब, जब आइन कहता है कि इलेक्शन लड़ने की उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर ये डैनिश पीपल्स पार्टी या दूसरे सियासतदान इस तरह की बातें नफरत अंगेज आपस में जो है वो दूसरे के साथ नफरत की जाए सिर्फ वोटों के लिए, तो ये क्यों की जाती है ऐसी बातें?
3: जी बिल्कुल सही आपने ये सवाल किया है, बड़ा रेलिवेंट सवाल है। इसकी वजूहात हम खुद लोग बने हैं, हम लोगों में चंद अनासर ऐसे हैं जिन्होंने इस कानून को तोड़ा है और इनके टैक्स पेयर की रकमों को मिलियंस के अंदर उन्होंने चीट किया और दुबई और दूसरे ममालिक में भागे। फिर हमारे जो रवैये हैं हमारे यंगस्टर्स के, वो मर्सिडीज गाड़ियां और दूसरी गाड़ियों को लंबी लाइनें लगी होती हैं और वो सिंगल फुटपाथ पे चला कर गाड़ियों और लेकर जाते हैं। तो ये जो डैनिश है ये राशिस्ट नहीं है, हमें खुद अपने आप को संवारना है, हमें खुद ठीक करना है। लेकिन जैसे कि अभी अदनान ने कहा, मैं इसकी बात पे बिल्कुल तायद करता हूँ कि गवर्नमेंट जो है इसको अब टर्नओवर लेना पड़ेगा, क्योंकि अब हालात जो है वो मुस्लिम कंट्रीज के हाथ में है और जो इंटरनेशनल मौसम है वो काफी तब्दील हो रहा है और इसके अंदर इनको जो है अब ये प्रेशराइज होंगे। मेरा ख्याल है कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ही हमें यहाँ के हालात जो है वो वाजह होने शुरू हो जाएंगे। बाकी ट्रांसपोर्ट जो इन्होंने कहा है कि 22 साल तक हम फ्री करेंगे, वो इनको पहले से कर देनी चाहिए क्योंकि आगे तो छुट्टियां आ रही हैं, बच्चों ने अब एग्जाम दिए, वो तो सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन जो पेंशनिस्टों के लिए इन्होंने मुश्किल खड़ी की है कि अभी तक 4 किस्म की पेंशन यहाँ पे मिल रही है लोगों को, और बाद पेंशनिस्ट जो है जिनको 2003 के बाद पेंशन मिली है, यहाँ पे पेंशन देखें जो अरीना पेंशन है उसके अंदर मसला सबसे बड़ा यह है कि खुदा ना खासा कोई आदमी काम कर रहा है उसका एक्सीडेंट हो जाता है या वो बीमार कोई ऐसे ही उसके साथ आफत आ जाती है कि वो उसको मजबूरन पेंशन पे जाना जाता है, तो उसको वो पैसे नहीं मिलते जो पहले हमारे जैसे हम लोगों ने 40 पेंशन ली या हम लोगों ने पेंशनें दी हैं फुल पेंशनें, इनमें उन्होंने काफी डिफरेंस किया है। अब देखते हैं कि ये क्या करते हैं और क्या नहीं करते, लेकिन उम्मीद ये है कि जो बेटे फ्रेडरिकसन है वो ग्रीन लैंड के हालात को देखते हुए और इंटरनेशनल हालात को देखते हुए डेनमार्क के अंदर हो सकता है, मेरा ये अंदाजा है कि वो गर्मियों की छुट्टियों में कोई ना कोई यहाँ पे करवट लेगी और इसके डेनमार्क की जो बची कुची साख है उसको बेहतर करेगी और मुसलमानों के साथ बेहतर तल्लक करेगी। जैसे कि नान ने कहा यहाँ पे जो इस वक्त 65% डॉक्टर्स हैं वो मुसलमान हैं, यहाँ के इंजीनियर्स और बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो मुसलमान हैं और यहाँ के जितनी भी आपकी ट्रांसपोर्ट चल रही है उसके अंदर मेजॉरिटी जो है वो फॉरनर्स हैं और पाकिस्तानी हैं मुसलमान हैं, तो इनका काम नहीं चल सकता, लिहाजा इनको जो है वो मैन पावर की जरूरत है और वो
2: तो शाह साहब क्या इनिस लिस्टन जो है अपने वादों पर कायम रहेगी कि जो उन्होंने कहा कि जो भी पार्टियां कह रही हैं कि पेंशन बढ़ाएंगे और ये दांतों का इलाज जो है फ्री होगा, ट्रांसपोर्ट फ्री होगी, क्या ये पार्टियां अपने मौकों पर कायम रहेंगी?
3: देखिए जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि इनिस लिस्टन की बात जो है वो सुनी जाएगी, बाकी जो है क्योंकि उन्होंने मिनिस्ट्रियां ले ली हैं वो एंजॉय करेंगे और इनिस लिस्टन को इसलिए रखेंगे कि कहीं इनिस लिस्टन जो है वो ब्लू ब्लॉक के साथ मिलके इनको कोई प्रॉब्लम ना इनके लिए क्रिएट कर सके,
2: सियासी फटक है।
3: हाँ जी, इसलिए ये कोशिश यही करेंगे कि इनिस लिस्टन जो है ये इसकी बात माने और इसके जो बाकी पार्टियों को देखे ना, कोई सामने नहीं आया, एसएफ का कोई सामने नहीं आया, रेडिकल का अभी तक मुतालबा कोई सामने नहीं आया, ना ही मॉडरेट का कोई मुतालबा सामने आया है कि भाई इन्होंने कौन कौन से जो है मुतालबे सामने रखे हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं तजिया नगार कि भाई बेडे फैजिस्तान वापस आएगी तो ये एक दफा दोबारा बैठेंगे और फिर उसके ऊपर ये फैसला करेंगे कि किस किस पार्टी की कौन कौन सी। लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता क्योंकि ये तो अमीरी बोर्ड के अंदर पहले ही फैसले हो चुके हैं कि कौन सी चीज लागू की जानी है और किस चीज को जो है वो डिले करके अगले सालों पे डाला जाना चाहिए, और ये मुआहदा तो इनके हो गए हैं। अब वाजिया करें कि किस तरीके से
2: चलें, जब तक पूरी जो चीज क्लियर नहीं होगी, सफे पूरे सारे नंगे नहीं होंगे। मजीब साहब, आपकी ऐसा पार्टी है तो आपकी पार्टी भी तो डेफिनेट प्रेशराइज होगी।
0: देखिए जी, मैं दोनों अपने साथियों की बात सुन रहा हूँ, बड़ी अच्छी माशाल्लाह तजिया निगार है, दोनों बड़े अच्छे तरीके से हर चीज को पेश करते हैं। मैंने शुरू में कहा कि मेरा ख्याल है जो नया साल शुरू होगा 2027, शुरू में ही मेरा ख्याल है आगे चीजें आगे बाहर आएंगी। अभी सारा कुछ जितनी भी ये प्लानिंग है वो हुई है या हो रही है, वो उसको पाया तकमील पहुंचाने के लिए थोड़े से इनको और टाइम लगेगा क्योंकि अब हुकूमत बन गई है और हुकूमत बनने के बाद आपको पता है जिम्मेदारियां आ जाती हैं। एसएफ 12 साल के बाद दोबारा हुकूमत के अंदर आई है तो जाहिर सी बात है उनके पास 5 मिनिस्ट्रियां हैं, अगर तो वो अपनी मिनिस्ट्रियों का कारकर्दगी पेश करेंगे तो आइंदा इलेक्शन में उनको कोई कामयाबी हासिल होगी, वरना तो फिर जैसा मैंने बताया कि जो चंद जमातों का हाल हुआ है इनका भी ऐसा ही हाल हो जाएगा। लेकिन जरूरी चीज यही है कि मेरा ख्याल है कि अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, ऐलान हुआ है, अभी इंतजार करें। मेरा जहां तक अंदाजा है, मैं अपना कह सकता हूँ, ये जो 3-4 महीने होंगे ये दिसंबर तक, ये इन्हीं चीजों में होंगे कि कैसे फैंडिंग होनी, क्या चीज आगे लेके आनी है, क्या चीज अभी पेश करनी है, क्या चीज 2027 में है, क्या चीज 28 में है। तो मेरे ख्याल स्टार्ट उन्होंने लेना है चंद चीजों से और उस पे वो सारे मुत्तफिक होंगे। इन लिस्ट इसलिए मजबूत रहेगी कि उनका ये मुतालबा अगर माना जाता है जी कि एथेन ले जो है डेनमार्क में फ्री हो जाए, तो आपका अगर आपके पास अभी अगर 15 सीटें हैं तो रिलैक्स हैं तो 25-30 सीटें ले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुतालबा है और ये डेनमार्क की सबसे महंगी जो है ना ट्रीटमेंट है थैनले की। मैं समझता हूँ कि ये उनकी बहुत अच्छी फौसला है और बाकी जमातों को इसके ऊपर एग्री होना चाहिए। और मैं एक और चीज बिल्कुल वाजह कर देना चाहता हूँ कि ये अभी जो जमातें जिन्होंने ये हुकूमत बनाई है, हमारे मोहतरम शाह साहब कहते होते हैं ये पीडीएम की जमातें हैं, तो ये अगर इन्होंने कामयाब होना है तो इन्होंने अपनी आवाम की तरफ देखना है। जैसे नान ने बताया पेट्रोल है, जैसे मैंने कहा मम्स फ्री है, क्रोन फ्रोक और उसके बाद और चीजों के ऊपर भी फ्रो, वहां पे भी उन्होंने मम्स का कुछ सोचना है, तो ये चीजें अगर बेहतर होना शुरू हो जाएंगी तो आवाम को सहूलत मिलेगी, तो मेरा ख्याल है हुकूमत कामयाब बनो। जैसे शाह साहब ने बताया ग्रीनलैंड मसला है और चीजें मसले इंटरनेशनल लेवल पे है, अभी देख लें मुस्लिम कंट्रीज जो है इस वक्त उनके अंदर इतफाक है, और किसी सूरत में भी अब यहाँ पे जैसे शाह साहब ने तफसील बताया कि तमाम एरियाज के अंदर जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी जो है और फॉरन जो है वो काम कर रहे हैं और अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं और अच्छी पोस्टों पे काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अब इस चीज पे सोचना चाहिए कि हमें ये नफरत की सियासत खत्म करनी चाहिए, हमें जो है रवादारी वाली और हमें जो है मिल जुल के हम डेनमार्क में रह रहे हैं, 50 आधी सदी से ज्यादा हम टैक्स दे रहे हैं, हमारा राइट्स है, हमारे हक है, अगर हम ठीक है, हाँ अगर हमारे अंदर कुछ चंद लोग कोई अगर ऐसा काम करते हैं क्रिमिनलिटी वाला काम करते हैं तो उनको तो राइट है, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बाकी लोग हैं अगर 5% ऐसे हैं तो 95% जो अच्छे तरीके से अपना टैक्स दे रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, अपनी नौकरियां कर रहे हैं, उनके हकूक सल्ब न किए जाए, उनके हकूक और उनकी जो चीजें उनको बेहतर किया जाए। हुकूमत की कामयाबी का राज यही होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता चंद चीजें जो है वो शुरू कर दें ताकि जो लोगों का थोड़ा सा जो होता है ना क्या कहते हैं اعتبار وہ ٹھہر جائے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حکومت جو ہے وہ بہتر کام کرے گی.
2: اذان اب کلوزنگ کرتے ہیں, تو آپ نے ان کی باتیں سنی, تو آپ کا جو سوشل ڈیموکریٹ کے گروپ فور مین ہے وہ تو غیر ملکیوں کو جانتے ہیں, تو لیکن جب غیر ملکیوں میں کوئی ایک آدھ کوئی عنصر ہوتا ہے, کوئی غلطی کرتا ہے, تو سزا اس کو ملنی چاہیے, نہ کہ پوری سسٹم کو ملنی چاہیے, پورے اوورسیز کو ملنی چاہیے یا پورے ڈنمارک کے لوگوں کو ملنی چاہیے.
1: نہیں ڈاکٹر صاحب, وہی بات میں آپ کو کہہ دوں کہ وہ یہی اس پہ آج کا ہے کہ ہم نے اسی لیے جو اسٹیٹمنٹس دیے تھے الیکشن کے اندر, وہ یہی دیے تھے کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے جن نے کرائم کیا ہوا ہے, اور جو اس ملک کا کیا کہتے ہیں کوئی بینیفٹ نہیں کرنا چاہتے, اور ہم ان کے پیچھے جائیں گے, باقی ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ہمیں ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو دن رات محنت اس ملک میں کرتے ہیں, ان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ کمنگ ڈیز میں ہو جائے گا. اور میں کلوزنگ میں آپ کو ایک چیز یہ بتا دوں کہ گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے نا اس وقت, اور جو سیٹنگ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, ان کے لیے ایک ویورز کے لیے اور سب کے لیے میں انفارمیشن دے دوں, وہ سارے کام شروع کریں گے, مگر ان کی ایک مسئلہ ان کے لیے یہ ہے کہ آج 5 جون ہو گیا, اور کمون کے اور ریکیونز کے جو بجٹ ہوتے ہیں وہ ان نے نیگوشیشن کر لیے ہوتے ہیں اور کمون کو بھیج دیے ہوتے ہیں کہ وہ سمر ویکیشن جانے سے پہلے جو ہوتی ہے 31, 32, 33, 34 کمونوں کی زیادہ تر, کہ اس میں وہ تھوڑا بہت کام کر لے, تو اس لیے وہ ایک منتھ اس میں ڈیلیٹ ہو چکی ہوئی ہیں. تو اس لیے جو گورنمنٹ کی فرسٹ پیریڈ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ کمون کا اور ریجن کا بجٹ وہ نیکسٹ ویک بیٹھ کے کمونس لینس پیرنگ اور ریگیونس کے ساتھ مل کے بنا لیں, اس کے بعد وہ پھر جو ہوتا ہے فینس بجٹ نیکسٹ ایئر کا وہ بھی جولائی میں تیار کر لیں, تو اس کے بعد پھر وہ کیا کہتے ہیں جو اپنا کام ہے نا اگست میں اپنا ٹریک پہ شروع کر دیں گے. اس لیے ان کی کچھ کیا کہتے ہیں چیزیں ہیں جس پہ وہ پیچھے ہیں, اس لیے وہ کیا کہتے ہیں انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ ایک اور انفارمیشن داتے دے رہے ہیں کہ جو اول ویل ہوتی ہے نا پولیٹیکل اول ویل جس طرح ہوگی انفراسٹرکچر ہوگی فینس اول ویل ہوگی اکنمی اول ویل ہوگی اس پولیس نیمڈ ہوگی, یہ دوسری پارٹیوں نے اس ویکینڈ میں اپنے نام وغیرہ بنا دینے ہیں, وہ جب کمیٹیاں بن جائیں گی تو پھر مسٹر بیٹھ کے ان کے ساتھ اپنے کام شروع کر دیں گے. سو اس لیے تھوڑا بہت کیا کہتے ہیں لوگوں کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ سب کچھ جب بن جائے گا تو آہستہ آہستہ کمون کے بھی کام شروع ہو جائیں گے, مگر پھر ہوم کو جو فینس مسٹر ہے جو جسٹس مسٹر ہے نیکولا وامنگ, یہ ان کی فرسٹ پیریڈ یہی ہے کہ یہ جو کمون کے بجٹ ہیں اور ریجن کے بجٹ ہیں یہ بن جائیں, تو اس کے بعد کیونکہ یہ ڈیلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں, یہ نارملی مئی میں پتا چل جاتا ہے مگر جون آ گیا تو یہ نہیں بنے ہوئے, تو اس لیے ان پہ تھوڑا پریشر ہے کہ ان کے ساتھ یہ بیٹھ جائیں. جہاں تک ہماری انفارمیشن ہے یہ منڈے کو ان کی میٹنگیں شروع ہو جائیں گی, ویسے کل جی ویکینڈ میں ہو جائیں گی ہمیں نہیں پتا, مگر پھر اس کے بعد وہ اپنا کام شروع کر دیں گے تقریباً آپ سمجھیں کہ. اور دوسری بات ایک اور چیز کہ پارلیمنٹ جو ہے نا اس کی ویکیشن ہوتی ہے, تو وہ لا فاصلے جو بننے ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں 1 جون سے لے کے 1 اکتوبر تک, زیادہ تر وہ چھٹیوں پہ ہوتے ہیں, تو جتنے لا فاصلے بنیں گے وہ جا کے اکتوبر سے بنیں گے جب یہ واپس آئیں گے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اپنی سمفے کم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اس کی ہمیں کوئی اطلاع نہیں, مگر ویسے پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ 1 جون سے لے کے 1 اکتوبر تک ویکیشن پہ ہوتی ہے, کوئی لا فاصلے نہیں پاس ہوتا, خالی فینس لا کے علاوہ نہ کوئی ایمرجنسی چیز ہو جائے. تو یہ بھی بہت ساری چیزیں تبدیلی ہیں, یہ کمنگ ڈیز میں پتا چلے گا کہ اب کیسے صورتحال بنتی ہے.
2: شاہ صاحب کلوزنگ کی طرف چلتے ہیں کہ اس حکومت نے کیا کیا, یہ 3-3 مہینے چھٹیاں کرتی ہے اور جو وعدے کیے ہیں شاہ صاحب یہ پورے کریں گے؟
4: بالکل عدنان نے بہت اچھی بات کی ہے, یہ وعدے ابھی اس لیے ان کو ڈیفیکلٹی آئے گی کیونکہ ان کے پاس سرمایہ نہیں, انہوں نے سرمایہ جو ہے وہ بڑے غلط طریقے سے کمیونوں کی جو سیونگ تھی وہ لے کے پچھلے سال انہوں نے ساری یوکرین کو دے دی, اپنے چیزیں دے دی, پھر اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ڈیفینس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے پچھلے سال بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے, اور اس لیے ان کے پاس ابھی ان کو مشکلات آئیں گی. آپ کمیونوں کا یہ اثر دیکھ لیں کہ یہاں پہ گندگی پڑی ہوئی ہے سڑکوں کے اوپر, سائڈوں پہ اوپر گھاس بڑے ہوئے ہیں, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. ہمارے کونسلرز جو ہیں خواہ وہ ڈینش ہوں فارنرز ہوں جو بھی ہوں, ये उनका काम बनता है कि सबसे पहले जैसे डेनमार्क एक नाइस और क्लीन कंट्री होता था, अब ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे आप इंग्लैंड में गए हुए हैं और उतरते हैं तो देखते हैं कि हर तरफ जो है वो गंदगी गंदगी नजर आती है। यही हिसाब अब यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया है और इससे जो है वो हमारे हालात जो है वो खराब है। दूसरी चीज यह है कि जो बच्चों के लिए है, इनको सबसे पहले ये चाहिए कि बच्चों के लिए जो बान हेमन है, बास बान हेमन में बहुत हाई किस्म की, जिनके तीन तीन चार चार बच्चे हैं या ज्यादा बच्चे हैं स्कूल में जाने की, उनको जो पैसे देने पड़ते हैं पास है पेरेंट्स को, उसको कम करना चाहिए। और ये हर मुल्क कम्यून से कम्यून जो है ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे मुल्क के अंदर ये होना चाहिए कि अगर कोपनहेगन में एक बच्चे के 500 हैं तो फिर यूलैंड में भी एक बच्चे के 500 होना चाहिए। इसके ऊपर काम होना चाहिए, इसके ऊपर लिखना चाहिए। दूसरा जो वेलफेयर है, इसके ऊपर मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ ये करेंगे कि जैसे मजीब कुरैशी मेरे भाई ने कहा कि थैंडे जो है ये कुछ थोड़ा सा कम कर देंगे, कम्यूने जो है वो थोड़ी सी सपोर्ट कर देंगी, लेकिन इसके साथ अगर आप ये देखें कि बसों का, तो बसें जो है ये कम्यून भी बसों को छूट देती है, बल्कि उनकी इमदाद करती है, इसी तरीके से रिज्यून भी उनकी मदद करती है। तो ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है जो कम्यूनों के ऊपर पड़ती है, क्योंकि बसें जो है वो चलाने के लिए जो कंपनी है उनकी वाबा है और उनके उनको चाहिए कि जो वो टिकट लेते हैं या जो उनके अंदर मुसाफिर जाते हैं उनको भी दूसरी कंपनियों की तरह टैक्स देना चाहिए, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर्स या दूसरी प्राइवेट लिमोसिन वगैरह हैं वो टैक्स देते हैं, इनको भी चाहिए कि ये गवर्नमेंट से पैसा लेने की बजाय, इमदाद लेने की बजाय, ये या तो अगर गवर्नमेंट से इमदाद लेते हैं तो फिर इनको चाहिए कि पेंशनिस्टों को, जो हैंडीकैप है इनको और जो स्कूल और कॉलेज के बच्चे हैं इनको बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए। जी राजा साहब,
2: चारों से सवाल है और ना में जवाब देना है, इसको अगले हफ्ते डिबेट की तरफ लेकर जाएंगे। मजीब साहब आप क्या समझते हैं, पेंशनिस्टों के लिए बस पास ट्रेन पास ये सारा फ्री होना चाहिए, एनओकों का इलाज और इसी तरह एनके फ्री होनी चाहिए, इसी तरह जो बाकी दांतों का इलाज जो फ्री होना चाहिए, आप क्या कहें, हाँ और ना में जवाब देना है आपने।
0: जी बिल्कुल होना चाहिए, मैं सिर्फ आधा मिनट लूंगा, बिल्कुल होना चाहिए, ये सारी चीजें जो आपने गिनवाई हैं ये सारी इनके लिए फ्री होनी चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि आपको पता है कि पेंशन जो है वह हर बंदे को 8 से लेकर 10,000 पाउंड मिलती है, तो उसमें तो गुजारा भी इतना आसान नहीं होता। मैं एक चीज, क्योंकि जो जो नई गवर्नमेंट के लिए जो मसला मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ये आ रही है खबरों में भी आ रहा है और सुना भी जा रहा है कि ये हो सकता है टैक्स को ना थोड़ा सा बढ़ाएं, तो उसमें देखना पड़ेगा कि आया ये टैक्स बढ़ाते हैं तो मराहत कहाँ पे है, अगर टैक्स बढ़ जाता है तो आसानियां कहाँ पे है। तो जो आपने चीजें गिनवाई हैं पेंशनिस्ट के लिए, जो खास साहब ने मोहतर कहा है कि बस के लिए जो किराए वगैरह है, ये जैसे स्टूडेंट है उन सब के लिए ये सहूलतें, उनसे खासकर जो जो बाने फैमिली हैं जिनके बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं उनको भी एक्स्ट्रा इमदाद मिलनी चाहिए। आज आप देखें ना, हम 50-50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, आज आप किसी सुपरमार्केट में जाएं आपके पास एक 1,000 करोड़ का अगर आपने सौदा लेना तो आपका एक तो थैला भी नहीं भरता। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हुकूमत को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और जो चीजें आपने बताई हैं वो पेंशनिस्ट के लिए फ्री होनी चाहिए।
2: जी शाह साहब, फ्री होनी चाहिए और नाम है।
4: ये बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, इसके अंदर ये है कि पेंशनिस्टों को जो बोली दी है इन्होंने वो बोली, आप हैरान होंगे कि वो वेस्टाइन और कोपनहेगन में वो बोली जो है वो अनमेनली बोली जो है, अनमेनली बोली सेल्स के जो किराए पे कमरे देते हैं, लाइरी देते हैं, उनसे ज्यादा महंगे हैं। तो लिहाजा ये कोशिश ये करनी चाहिए कि हर बंदे ने जो पेंशनिस्ट चला जाता है या खुदा ना करे वो फोर्सेस पेंशन पे चला जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसके लिए जो किराया है वो जिस तरह 70s और 80s में होता था उस तरीके से उनको हाफ किराया देना चाहिए। अब हैरानगी की बात है कि लोगों की इतनी पेंशन नहीं है जितने के ज्यादा वो अपना पेंशनिस्ट जो है वो दे रहे हैं, हूस रहा है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे, सबसे बड़ी गड़बड़ जो है कि दो घर के फर्द जो हैं वो दिन रात काम करते हैं, जब वो दोनों पेंशन के एज पे पहुंचते हैं तो एक को कम पेंशन मिलती है और दूसरे को ज्यादा पेंशन मिलती है। वो उसका बहाना ये करती है गवर्नमेंट कि देखे जी ये तो हुस्टन इनकम, ये जो सिलसिला है हुस्टन इनकम का ये खत्म करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस तरीके से लोगों के जो पास बचत है वो ज्यादा होगी। अगर दोनों को बराबर का पेंशन मिलेगी तो वो खुशहाल तरीके से रहेंगे। इस वक्त पेंशनर्स और बच्चों वाली फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा दबी हुई है, इकोनॉमिकली उनके ऊपर बहुत बंडल है। जी राजू साहब।
2: जी अदनान, आखिर में आपसे भी ये सवाल सारे या आपके साथ आपने सुन लिए, सबके जवाब भी सुन लिए, और आखिर में आप क्या कहेंगे?
1: ये ऐसे ही होना चाहिए और इसके लिए मैं यही कहूंगा कि इस पे इंशाल्लाह ताला काम भी किया जाएगा और इसके लिए हल भी निकाले जाएंगे और इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। जैसे कहा गया है कुछ चीजें प्रेशर पे है पर इंशाल्लाह ताला इस पे अब काम किया जाएगा और इस पे देखा भी जाएगा और कमिंग डेज में जैसे जैसे हमें इत्तला मिलेंगी कि फ्रेंड्स कैसे है तो व्यूअर्स को बताएंगे।
2: अदनान आपका बहुत शुक्रिया, शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, मजीब साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आएंगे। सामने नाजरीन ये थे अदनान अली अमीन, सैयद तकीर हसन बुखारी शाह साहब, मुजीबुर रहमान कुरैशी साहब, इन्होंने जो कुछ कहा आपने सुना, हमने छोटे छोटे सवाल भी किए, उनकी राय भी ली। सामने नाजरीन आपको भी ध्यान देना चाहिए, हमारा काल किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके जहन में कोई बात है, आप अच्छी कोई राय देना चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं, तो अगर आपकी आवाज़ का टाइम आपके लिए हाजिर है।